जी सनम, एक नया दिन आ गया है आपके लिए। जी हाँ, आज एक नई सुबह, एक नया आगाज, एक नई धड़कन की धुन सुनाई दे रही है फिर से हमें। वो आपकी है, हमारी है और उन सबकी है जो आज इस नई सुबह में सांस ले रहे हैं। वैसे बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ना, रात को सोना, सुबह जागना, वापस आंखें खोलना और एक नए दिन को एक्सपीरियंस करना, ये किसी मिराकल से देखा जाए तो कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप समझे तो बहुत कुछ बहुत अलग है, और अगर आप ना समझें तो फिर तो जिंदगी बस नॉर्मल है, रात को सोए सुबह हो गई। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारा दिल हर रोज धड़के, हर सुबह धड़के, इसमें बहुत बड़ा मिराकल है। और इसीलिए इस मिराकल को सेलिब्रेट करने का एक और दिन आ गया। आपके बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी ख्वाहिशें थी और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उन सब के लिए आपको जिंदगी ने दिया है आज का एक और मौका। ये मत सोचिए कि अभी तो मौके मौके बाकी हैं, पूरा साल बाकी है ना बाबा। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है ऐसा, आपके लिए है। आज का दिन कम से कम है ना, बस ये दिन ही हमारा अपना है। और चलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं मिलकर एक बार फिर से रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर हमारे और आपके प्यार भरे साथ इट हैपेंस। गुड मॉर्निंग, मैं हूं सताक्षी आपके साथ और बहुत ही जबरदस्त बातें हमारी हमेशा की तरह होंगी इस मॉर्निंग। बहुत सारा ज्ञान है आज मेरे पिटारे में फिर से जो आप तक पहुंचाऊंगी। एक और ट्रैक सुनिए और यूं ही मुझे सुनते रहिए, इट हैपेंस में बने रहिए रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

वेलकम बैक, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। और इट हैपेंस में अभी हम विश करेंगे आज के बर्थडे बेबीज को, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्मदिन एक ऐसा दिन है जब यार मन करता है कि विशेज आती जाएं। देखिए, आप चाहे इस वक्त 4 साल के हों, मैं जानती हूँ 4 साल के बच्चे में नहीं सुन रहे होंगे, मगर फिर भी भाई है ना, 4 साल के हों या फिर 64 ईयर्स के, 74 ईयर्स के, 84 ईयर्स के हों, बर्थडे का जो क्रेज है ना वो हमेशा वही रहता है। इवन जो लोग 100 बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सोचिए कितने प्यार से करते हैं, है ना, वो उनके लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि बर्थडे सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होता है और सब उतने ही एक्साइटेड रहते हैं विशेस को लेके। सो आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे जिनका भी आज जन्मदिन है। जिंदगी को सेलिब्रेट कीजिए और जीते रहिए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज वो बन गए थे मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ। भाई ये खिटपिट करने के लिए जिंदगी भर अगर किसी का साथ मिलता है तो वो हस्बैंड का वाइफ को और वाइफ का हस्बैंड को, तो ये जिंदगी की खिटपिट आपको मुबारक हो। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आप सबके नाम प्ले करती हूँ, ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपकी अपनी रेडियो प्रिस्वानी पर।

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
3: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी, आपके साथ है आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। आपको भी बॉस ये शिकायत जरूर सुनने को मिलती होगी, भाई साहब बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। भाई देखिए, बदले हम नहीं हैं, अब लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। जब तक आप उनकी बातें मानते रहे, आप उनके अपने हैं, लेकिन जब आप जरा सा अपने बारे में कहने या अपनी बात रख दें तो आप में एटीट्यूड आ जाता है। जब तक आप उनसे सहमत रहें, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, आप अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन आप सच बोल दें बस आप बुरे बन जाते हैं। भाई आजकल रिश्ते दिल से नहीं, सुविधा से निभाए जाते हैं। काम हो तो आप याद रहते हैं और काम निकल जाए तो लोग भूल जाते हैं। देखिए पूरा खेल जो है वो जरूरत का है। लोग नहीं बदलते हैं, उनका मतलब बदल जाता है, और आप भी नहीं बदले हैं, बस हम आपने सच कहना शुरू कर दिया है। आइए एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। जी हाँ, रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर आप सताक्षी के साथ हैं।

अच्छा, हम ओवर थिंकर्स को लेकर सोचते हैं ना यार, कितना सोचते हैं ये लोग, कितना कैसे इतना सोच लेते हैं, कैसे पास्ट फ्यूचर सोच लेते हैं। लेकिन देखिए, ओवर थिंकर से ज्यादा जो है वो आपको लॉयल इंसान नहीं मिल सकता है। आपको चीट करना तो बहुत दूर की बात है, अगर गलती से आपको जरा सा भी हर्ट कर देंगे तो आपसे कहीं ज्यादा परेशान वो हो जाते हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा डर होता है आपको खो देने का। हाँ, वो आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको खोने से वो हमेशा डरते हैं। उन्हें आपकी छोटी से छोटी बात से बहुत फर्क पड़ता है। और वो आपसे लड़ते हैं इसलिए नहीं कि वो आपको नाराज करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपके आसपास किसी को नहीं देख सकते। और वो कितना ही नाराज हो जाए, कितना ही खफा क्यों ना हो जाए, वो आपकी परवाह करना कभी बंद नहीं करते। चलिए, ऐसे लोगों के नाम जो ओवरथिंकर्स हैं और आपके दिलों के बहुत करीब हैं, एंजॉय करते हैं स्ट्रेस। सुंदर ये सताक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो ब्रिस्फानी 1701 AM।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.
2: Welcome back. It happens. Enjoy कर रहे हैं आप, सताक्षी आपके साथ है और मेरे साथ आज के सुबह के कुछ बहुत ही प्यारे गानों की हैट्रिक के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हैं। आइए सुनते हैं आज का पहला ट्रैक।

गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एफएम पर। आइए आगे बढ़ते हैं गानों की हैट्रिक के एक और ट्रैक के साथ, और इनफैक्ट ये लास्ट ट्रैक, और इसके बाद इठापन समय फिर से होंगे आपके साथ हमारी और आपकी बातें। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए इठापन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

बात करते हैं पास्ट की। कहते हैं कि पास्ट सबका होता है, लेकिन अपना पास्ट किसी को बताना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारा भरोसा, बहुत सारा ट्रस्ट चाहिए होता है, और भरोसा इस बात का कि सामने वाला आपको समझेगा, आपको जज नहीं करेगा। क्योंकि एक डर होता है ना पिछले एक्सपीरियंसेस से कि कहीं वो इंसान जो है वो आपके पास्ट का मजाक ना बना दे, या आपका पास्ट आपको ही दिखा के वो आपको ही शर्मिंदा फील ना करा दे, आपको ही छोटा फील ना करा दे, आपको ही गिल्ट में ना डाल दे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि इंसान का किसी पे भरोसा करने का जो एतबार है, जो उसका इमोशन है, वही खत्म हो जाता है। सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आप, इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन 107.01 FM।

अच्छा, मेरा ना आजकल बड़ा अजीब चल रहा है। नो कि आपका भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हम सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं हर चौथे दिन सोचती हूँ कि यार कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीऊंगी, हेल्दी खाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपने डाइट पर फोकस करूंगी, अपनी हेल्थ पर फोकस करूंगी, अपने करियर पर फोकस करूंगी, उल्टी सीधी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। फिर भी पता नहीं कैसे रोज शाम को घूमते फिरते मेरा मोमोज खाने का मन हो जाता है, मुझे पिज्जा अच्छा लगने लगता है, मुझे बर्गर की क्रेविंग होने लगती है। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, देखा, सच निकलवाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। आई नो कि आपकी हेल्थ की वाट लगी पड़ी है, तो भाई जरा फोकस कीजिए, आप ही की सेहत है, और अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो भला कौन देगा। एक और गाना सुनिए मेरे साथ और ख्याल रखिए खुद का और खुद की हेल्थ का। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

0: सुबह से शाम तक
1: When I will dance, my dance shall speak for me.
0: शाम से रात्रि तक
2: Superb, superb, fabulous, outstanding.
3: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा.
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान.
2: हिल मत चल.
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा. ओके
2: सॉफ्ट
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए तेरे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बड़े हो। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नू अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर इना जेड़े पुरुष सीगे नू अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी वन सर वन एम ते जी अच्छे संदेश अलग दिराल से बने हुए। हुण देखो कचौड़ी गली बारे में तुहानू इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बार गीत ते तुसी जिहड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उहनां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला हैगियां ने जुड़ियां होईयां जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

सोते जुड़ते रहो रेडियो ब्रिसोनी विद सर ओन एम सर फेसबुक पेज है जी ब्रिसोनी एट ब्रिसोनी डॉट कॉम सर ईमेल आई डी है सर ये जेड़ा भी अपनाना हो अपनाओ पर सर नगला बता जरूर करते रहो तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो मैं कल करूंगी मुलाकात रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is Grand Kirtan Night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just enough.
7: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459, या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583, या फिर बाबा ऑन 0413701651।
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622, or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au, और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: When I will dance, my dance shall speak for me.
1: शाम से रात्रि तक
3: Superb, superb, fabulous, outstanding.
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा.
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान.
3: हिल मत चल.
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा.
3: या
4: Okay, soft.
3: Yeah, soft.
4: Yeah.
3: Up loud. Yeah.
5: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना.
6: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ.
6: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
10: अरे मुन्ना, मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे
11: क्या

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी भाई बहनों को। भाई बहनों का यह त्योहार हर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाए और सेफ बनाए। जी हाँ, सो या इसी के साथ रक्षाबंधन आ गई है और मैं इतना ही कहूंगी कि अपने भाइयों को लूटने का वक्त आ गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले हमारी तरफ से हैप्पी फ्राइडे आप सबको। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे का इंतजार था तो फ्राइडे आ गया है। और अब जब फ्राइडे आ गया है तो आई होप आप इसे अच्छे से जी रहे होंगे, आप इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करके बैठे होंगे। वेल ऑफकोर्स दिन में तो काम करना पड़ता है लेकिन शाम तो सुहानी हो सकती है एंड फ्राइडे नाइट्स कैन बी रियली रियली। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत ज्यादा वाइज हो इन दैट वे। जी हाँ, सो इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हेल्दी रिचुअल के साथ। वही हेल्दी रिचुअल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रखता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हमें। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते यहां पर सबसे पहले जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं वो है आपकी फेवरेट गीत का गाना, आई मीन जब भी मेट से ये इश्क हाय। मतलब आज भी जब घूमते फिरते हुए, मतलब कभी आप वेकेशन पे गए हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे, तो एक जैसे सी ड्रेस पहन के गीत वाली फीलिंग लेना जो है वो मस्ट है। जी हाँ, और अगर आपने जब भी मेट नहीं देखी है एंड इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट देन यू शुड really watch Jab Bhi Met because Geet is legendary and Geet is timeless. Ji haan, sunte hain isko aur fir karte hain aur bahut saare

जी दोस्तों, मन तो सच में बुद्धू सा ही होता है, ऐसी चीजें मांग लेता है जो कि शायद हमें जरूरत भी ना हो जिन चीजों की, या फिर जो चीज हमें मिल नहीं सकती है। मन ऐसा ही बुद्धू है, कोई चीज कोई इंसान ऐसा मांग सकता है दिल और मन जो कि ना हमें चाहिए हो ना हमें मिल सकता हो, लेकिन फिर भी उसको पाने की, उसको लेने की जो इच्छा है वो जागृत हो जाती है। और मन वही है, मन आपके साथ खेलता है तो उसके खेल से बचना सीख। इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम की, वेदर की, टेम्परेचर की। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे इतना ही कहने की जरूरत है कि बरखा आई रे अच्छा ठीक है गाऊंगी नहीं, सो डोंट वरी। मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, ओ माई गॉड निविया इज गना सिंग नाउ एंड वी कैन नॉट हैंडल दैट, निविया हमारे कान से हैंडल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, आपके नहीं मेरे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो हैंडल नहीं कर सकते मेरी सिंगिंग, सो आई टोटली अग्री ऑन दैट। इसी के साथ टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो आज का टेम्परेचर मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 21.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 19.9 डिग्री सेल्सियस के करीब। और वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, मतलब कल के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि बारिश होती हुई मुझे नजर आ रही है, मतलब आपके इलाके में अगर थोड़ी बहुत ही हो रही होगी, अब नहीं भी हो रही होगी, तो देर आर मेनी इलाकाज जहां पर बारिश हो रही है। जी हाँ, सो इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। जी हाँ, नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट। और इसी के साथ सैटरडे की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है विद 60% चांसेस ऑफ रेन। जैसे आज तो 90% चांसेस है बारिश के, मतलब 90% जो एरिया है सिटी का उसमें बारिश होने ही वाली है, वो जो 10% है उसमें थोड़ी बहुत नहीं होगी, लेकिन

डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 40% चांसेस बारिश के। मतलब वीकेंड पे मुझे बारिश दिख रही है बट उतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं दिख रही है। सो देयर मे बी चांसेस कि आप बाहर निकल पाओ मजे से और जबरदस्त तरीके से आउटिंग कर पाओ, लेकिन उसमें भी फेरबदल हो सकता है बिकॉज इट्स टेम्परेचर एंड इट्स रेन। जी हाँ, बारिश जो है वो अपनी ही अंगड़ाई लेकर चलती है, अपनी ही अदा में चलती है, हम उसे ना रोक सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं बट रोकना ना, इंसानों के लिए बारिश रोकना नामुमकिन है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आप में से रसगुल्ला या रसगुल्ला खाने का फैन कौन कौन है? आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, फेस्टिव सीजन अभी पूरी तरह से आया भी नहीं है और तुम मिठाई का नाम लेकर हमारे मुंह में पानी लेकर आ रही हो। वेल, क्योंकि इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। कल ही की बात है, मेरे को सोशल मीडिया चला रही थी और मेरे सामने एक बहुत ही पत्ते की रील आती है और मुझे उसे देखकर, उसे पढ़कर एक नया विजडम जो है वो मिलता है। और वो क्या था जी हाँ, आप भी ध्यान से सुनिए। जब रसगुल्ला देखने से मुंह में पानी आ जाता है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, जब रसगुल्ला देखने से मुंह में पानी आ जाता है तो पानी देखने से मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? भाई कोई बताए यार, क्यों नहीं आता? मतलब आप सोचिए ना, लॉजिक बन नहीं रहा। जब रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ जाता है तो फिर पानी देखने से मुंह में भी तो रसगुल्ला आना चाहिए ना। मतलब दोनों चीजें वैसे होनी चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दिस डज नॉट हैपन, बट या आई वाज लाइक या आई नो पानी आता है रसगुल्ले को देखकर, तो पानी को देखकर रसगुल्ला भी मुंह में आना चाहिए। और अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो जी हाँ। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए कि आप लोगों में से मीठा खाना बहुत पसंद है किसको और उन्हें उतना मीठा खाने नहीं देते हैं उनके घर वाले? जी हाँ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी होता है और बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ है हमारे घर में जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज इट इज सो फनी और वो भी मिठाई से रिलेटेड है। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर एक और बढ़िया सा गाना सुनाने वाली हूँ।

0: ਜ਼ਾਹਿਰ ਐਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, तो मैं आपके साथ अब एक बहुत ही फनी किस्सा शेयर करने वाली हूं और वो किस्सा कोई इंटरनेट से या सोशल मीडिया से लिया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ किस्सा नहीं है। सबसे पहले वो एक रियल किस्सा है जो कि मेरे खुद के घर पे हुआ है और मेरी मम्मी के बदौलत हुआ है। जी हाँ, तो आपको तो पता है मम्मी लोग कितनी फनी होती है, राइट? बट मेरी मम्मी आई थिंक थोड़ी सी ज्यादा फनी है। एंड सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि हमारे घर पे एक बहुत ही टेस्टी यमी जो है वो देसी घी के लड्डू का एक बॉक्स जो है वो आया था। और मेरी मम्मी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे घर में बाकी लोगों को मीठा इतना पसंद नहीं है, मेरी मम्मी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है और वो मीठा खाती रहती हैं चुपके चुपके, सामने सामने, हर तरह से। जी हाँ, अब सिचुएशन ये है कि ऐसा नहीं है कि हम उनको रोक रहे हैं या उनको खाना मना है, वो खा सकती हैं। इट इज दैट कि वो थोड़ा सा ज्यादा खा लेती हैं मीठा और उस चक्कर में हमें उनको रोकना पड़ता है। एंड व्हेन आई से हमें, मतलब हमारे घर के बाकी लोगों को। तो यही कुछ हुआ, वो जो देसी घी के लड्डू थे यमी से टेस्टी से, वो डब्बे में थे और वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनको खिसका रही थी। जी हाँ, और उनको खिसकाते खिसकाते ही मेरे भाई ने उनको एक धमकी दे दी कि मम्मी अगर आपने इसे और खाया ना तो आप देख लेना। मैंने गिन के लड्डू रखे हुए हैं, इसलिए नहीं बिकॉज वो खाना चाहता था और वो मेरी मम्मी को रोक रहा था, इसलिए ताकि मेरी मम्मी उसे लिमिट में खाए। जी हाँ, अब सिचुएशन ये हुई कि वो बात हुए कुछ दिन हो गए और एक दो दिन पहले जब मेरे भाई ने वो फिर से लड्डू का डब्बा निकाला तो उसने देखा कि लड्डू तो उतने ही हैं जितने गिन के रखे थे उसने, लेकिन लड्डू का साइज जो है वो छोटा हो गया है। लाइक अगर आप देखोगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जितना एक नॉर्मल साइज होता है उससे आधा हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि लड्डू किसी ने खाया, ऐसा लग रहा है कि लड्डू जो है वो वैसे के वैसे ही है, बस साइज छोटा हो गया है। मतलब यही था कि मेरी मम्मी ने उस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो उनको मेरे भाई ने दिया था कि मम्मी आपने लड्डू को अब हाथ लगाया तो देख लेना मैंने गिन के रखे हुए हैं लड्डू, उन्होंने उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। उन्होंने लड्डू खाए लेकिन आधे आधे खाए और उनको गोल मटोल करके फिर से रख दिया फ्रिज में। एंड शी इज सो स्मार्ट। जब हमने वो लड्डू का डब्बा निकाला और उसके बाद हमने वो लड्डू का साइज देखा तो हम उनकी तरफ देख रहे हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक स्माइल है, वो शैतानी स्माइल कि ओह मैंने तो कर दिया है ये घटनाक्रम, अब आप देखते रहो सोचते रहो कि क्या हुआ कैसे हुआ, आई एम नॉट गोना टेल यू। जी हाँ, क्योंकि उनके चेहरे पे वो शैतानी थी और वो पता चल रहा था कि वो कारनामा उन्होंने ही किया है। फिर हमने उनसे कहा और पूछा कि चलो ठीक है अब आपने कारनामा तो कर ही दिया, अब आप हमें बताइए। तो उन्होंने फिर से उस लड्डू के डब्बे से एक और लड्डू उठाया और उसे खाते खाते उसे नरेट किया। उन्होंने कहा कि देखो मुझे मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मी आप बहुत ज्यादा लड्डू खा रहे हो, आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, तो अब मैंने लड्डू गिन के रखे हूं और अब आप नहीं खाओगे। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा चैलेंज मुझे मेरे बेटे ने दिया था तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने उसकी गिनती कम होने नहीं दी, साइज बेशक छोटा हो गया हो क्योंकि मैंने आधे आधे लड्डू खा लिए थे पर गिनती उतनी की उतनी थी, अब चैलेंज तो मैंने पूरा किया है। और ये सारी की सारी चीजें वो नरेट कर रही है लड्डू खाते हुए हमारे मुंह के सामने और ये बता रही है कि यू नो वॉट आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन हियर और तुम लोग जो है वो मेरे बच्चे हो, सो डोंट यू डेयर चैलेंज मी बिकॉज आई कैन डू लिटरली एनीथिंग। या दैट्स व्हाट शी मेंट। और ये उन्होंने बोला नहीं, ये उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि बच्चे बच्चे ही होते हैं और मम्मी मम्मी ही होती है, आप मम्मी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बताओ जरा, लड्डू का साइज छोटा हो गया, लड्डू आधे आधे गोल मटोल होके रह गए लेकिन लड्डू की गिनती खत्म नहीं हुई, मतलब कम नहीं हुई। She is the smartest person I know, hands down. जी हाँ, आप मुझे बताइए कि आपके घर में भी ऐसे कोई महान व्यक्ति हैं जो ऐसी शैतानियां करते हैं। Now, I think she is 53 or 54 and she is doing this kind of शैतानियां. I don't know. क्या मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो शैतान बचपन में है वो बाद में भी शैतान ही रहेगा, इतना तो मुझे लग गया है पता। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, आज दिन तक आपने रोबोट्स और एआई का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होते हुए देखा होगा। जी हाँ, खासकर रोबोट्स का, मतलब आपने देखा ही है कि रोबोट्स जो हैं वो लिटरली गेम्स खेल रहे हैं, वो कराटे करते हैं, वो टाइकोंडो करते हैं, वो रनिंग करते हैं, वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो टेबल टेनिस खेलते हैं। बेसिकली रोबोट्स आर डूइंग लिटरली एवरीथिंग। जी हाँ, कुछ वेयर हाउस रोबोट्स होते हैं, कुछ जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, कुछ हाउस हेल्प रोबोट हैं। सो बेसिकली रोबोट्स जो हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस्तेमाल है रोबोट्स का वो पहली बार देखा है मैंने। जी हाँ, और ये इस्तेमाल है कि प्रोटेस्ट करने के लिए रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया। वेल वेल वेल, ये बात सच्ची है और इसमें कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस्सा कहाँ का है। सो बेसिकली ये किस्सा है पोलैंड का, जहां पर 30 से ज्यादा रोबोट्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्लोगन्स को चैंट कर रहे हैं। और वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप जब सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा वो अपने खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इंसान रोबोट से कुछ भी करवा रहे हैं। अब इंसान सोच रहे हैं कि हम जाके वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको मतलब कितना सफर करना पड़ेगा, तो हम क्यों करें जब रोबोट्स इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो रोबोट से प्रोटेस्ट भी करवा लेते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि अराउंड 30 रोबोट्स इंक्लूडिंग ह्यूमनॉइड मशीन्स एंड रोबोट डॉग्स गैदर्ड आउटसाइड पोलैंड्स डिजिटल अफेयर मिनिस्ट्री इन वॉर्सो ऑन मंडे टू डिमांड एआई रेगुलेशंस एंड प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन जॉब्स। जी हाँ, सो बेसिकली जिस चीज के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है ह्यूमंस के लिए प्रोटेक्शन, और जो एआई रेगुलेशन है उनमें कुछ अच्छे से लॉज जो है वो निकाले जाए। सो बेसिकली वो अपने खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो अपने खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि वो एआई के खिलाफ रेगुलेशन चाहते हैं। जी हाँ, और वो प्रोटेक्शन चाहते हैं ह्यूमन जॉब्स के लिए, क्योंकि रोबोट्स जो है वो लिटरली रिप्लेस कर रहे हैं बहुत सारे ह्यूमन जॉब्स को। सो ऐसे में कुछ लोगों ने सोचा कि प्रोटेस्ट करते हैं, फिर उन्होंने सोचा कि अब प्रोटेस्ट खुद करने की क्या जरूरत है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मतलब हम रोबोट्स के खिलाफ, एआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इन्हीं से ही करा देते हैं, मतलब हम क्यों करें। एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस जो हैं वो रोबोट से कुछ भी करवा सकते हैं, एंड दैट शुड बी द केस। सो उन्होंने वो कर दिया। जी हाँ, ये प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है डेमोक्रेटिज्म इनिशिएटिव के तहत, जिसमें रोबोट्स जो है वो वेव कर रहे हैं फ्लैग्स को, मार्च कर रहे हैं सर्कल्स में। जी हाँ, और चैंट कर रहे हैं डिफेंड वर्क प्लेस, टाइम फॉर रूल्स, डोंट वेट। ऑर्गेनाइजर्स जो है, जो कि ग्रेगोर कुलिस, जिन्होंने वॉर्न किया था कि इफ वी डोंट रिएक्ट नाउ वी मे सून हैव अ प्रॉब्लम। जी हाँ, so, उन्होंने ही बेसिकली इस प्रोटेस्ट को जो है ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने लिटरली पोलैंड के डिजिटल अफेयर मिनिस्टर के घर के सामने नहीं, उनकी मिनिस्ट्री के ऑफिस के सामने बेसिकली ये प्रोटेस्ट किया है। बट ये आइडिया जो है इटसेल्फ इज सो फनी कि आप रोबोट प्रोटेस्ट करवा रहे हो, और किस लिए प्रोटेस्ट करवा रहे हो, ताकि रोबोट्स और एआई के खिलाफ जो है अच्छे से रेगुलेशंस जो है वो आ सके, रूल्स आ सके, और ह्यूमन जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और यहां पर प्रोटेस्ट की जॉब भी आप करवा रहे हो रोबोट से। वाह, यू नो व्हाट आयरनी, दिस इज सो फनी, दिस इज सो फनी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ है, कल ही मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही दिलचस्प रील आती है और उसमें लिखा था कि आई जस्ट फिगर्ड आउट दैट शॉर्ट पीपल रिक्वायर्स लेस क्लोदिंग मटीरियल, लेस फूड एंड मोर ऑफ देम कैन फिट ऑन अर्थ, दे आर बेसिकली इको फ्रेंडली। जी हाँ, सो बेसिकली ये शॉर्ट पीपल यानी कि छोटे लोगों की बात हो रही है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। मेरी खुद की भी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी हाइट है, बल्कि कुछ लोग तो यही कहते हैं कि छोटी ही हाइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तो भाई एकदम 100% सही है। वैसे हम लोगों को कभी कभार लोग छोटू बोल देते हैं तो हमको बुरा लग जाता है, बट आप देखो जरा ध्यान से, अगर आप सोचोगे इसके बारे में तो तो कितनी सेंस बनाती है। मतलब हम लोग जो है, हमको जो है वो क्लोदिंग मटेरियल जो है वो कम लगता है, हमको खाना कम लगता है, जी हाँ, और हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो अर्थ पर जो है वो फिट इन हो सकते हैं, जी हाँ, और बेसिकली वी आर इको फ्रेंडली है, जी हाँ। हम लंबे लोगों की तरह नहीं है, उनको कपड़ों के लिए ज्यादा कपड़ा लगेगा, जी हाँ, क्लोदिंग के लिए ज्यादा जो है वो कपड़ा लगेगा, उनको खाना भी ज्यादा लगेगा, सब कुछ कितना ज्यादा ज्यादा लगेगा, स्पेस जो है वो धरती पर ज्यादा लगेगा। तो छोटे पीपल यानी कि छोटे लोग ज्यादा क्यूट होते हैं, और छोटे लोग जो है वो ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं। जस्ट रिमेम्बर, कोई भी आपको छुटकू बोलता है या छोटू बोलता है या छोटी बोलता है ना, तो आप बस ये बोल देना कि वी आर इको फ्रेंडली क्रीचर्स, ठीक है, वी आर नॉट शॉर्ट, वी आर इको फ्रेंडली, सो माइंड यू, या दैट्स व्हाट यू आर गोना से। एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्त के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांगो से। जी हाँ, DRC कांगो के एक स्कूल में आग लग गई, 24 बच्चों की मौत। जी हाँ, पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के विद्रोहियों के कब्जे वाले बुकावू शहर में दो स्कूलों में लगी आग से बचने की कोशिश के दौरान मची भगदड़ में कम 24 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी बताया गया है कि आग में कुछ वयस्कों की भी मौत हुई है। घनी आबादी वाले कुदुतू समुदाय में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। घायलों और आग से बचने वाले लोगों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। घटनास्थल के वीडियो में बच्चों को अस्पताल के फर्श पर दर्द से कहराते हुए देखा जा सकता है। आग में करीब 300 घर भी जलकर नष्ट हो गए। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई। वहीं विद्रोहियों की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने गुरुवार शाम मृतकों की संख्या 24 बताई। इससे पहले आई खबरों को भी उन्होंने पुष्टि की, लेकिन आशंका है कि मृतकों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में छोटे बच्चों को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा जा सकता है। राइटर्स के हवाले से एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोपहर तक आग बुझा दी गई थी, लेकिन मलबे और टीन की चादरों से बने ढांचों के बीच अब भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यूक्रेन का आरोप, पावल लुहाद में रूसी ड्रोन के हमले में 5 लोगों की मौत, 67 घायल। जी हाँ, यहाँ रशिया और यूक्रेन का विवाद जो है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इस विवाद को शुरू हुए। जी हाँ, यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक नी प्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र के पावल दुहाद क्षेत्र में एक शॉपिंग मॉल में रूसी ड्रोन के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 67 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के गृह मंत्री इवान विस्की ने कहा कि दिन में हुए इस हमले की चपेट में दुकानें और वाहन आए। उन्होंने कहा कि हमला उस वक्त हुआ जब सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में जपरोजिया और सुमी शहरों में 2 अन्य शॉपिंग मॉल को भी रूसी हवाई हमलों में निशाना बनाया गया था। रूस ने बताया कि बुधवार रात रिजॉर्ट शहर सोची में यूक्रेन ने समुद्र से ड्रोन हमला किया जिसमें 28 लोग घायल हुए। रूस ने यूक्रेनी हमलों में 3 और लोगों के मारे जाने का भी दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4.5 साल से ज्यादा समय पहले यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण युद्ध जारी है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भेजे दूतों की नई शांति पहल से फिलहाल ठोस नतीजे निकलते नहीं दिख रहे हैं। इन दूतों ने मॉस्को में पुतिन और कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत भी की है।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Biswani.
9: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. Yadi aapki dhoomrapan karne ki history rahi hai तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
10: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीज जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
11: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन से पहले क्या कहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन से पहले दुनिया भर के नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के नेता ब्रिक्स समिट के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक का भी जिक्र किया है, जिसका मतलब है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों के साथ रहना है और उनकी संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विचार विमर्श और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परस्पर सद्भाव, संवाद और मैत्रीपूर्ण संबंध शांति और सहयोग को सुदृढ़ करते हैं। इससे पहले ब्रिक्स समिट 2026 में शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार सुबह नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। उनके स्वागत के लिए पहले ही केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह पहले से वहां पर मौजूद थे। और जब भी व्लादिमीर पुतिन पहुंचते हैं भारत, उनका जो स्वागत होता है वो हमेशा ही भव्य होता है। लास्ट टाइम जब वो भारत पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया था और उन्हें वहां पर जादू की झप्पी भी दी थी। जी हाँ, इमेजिन। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
3: हाट हाट हमा यार, सौदा सौदा।
4: ओहो,
5: दोनों डील कर सील,
4: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

साथ खबरों की बात हो रही है और वहीं पर अमेरिका ने क्यों हटाया मिस्टर सिंह वापस जाओ वाला विज्ञापन। जी हाँ, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने गुरुवार को मिस्टर सिंह से अमेरिका से स्वेच्छा से चले जाने की अपील करने वाला विज्ञापन हटा दिया है। भारतीय अमेरिकी संगठनों और डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे नस्लवादी प्रोपेगंडा बताते हुए इसकी आलोचना की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक होमलैंड सिक्योरिटी ने बिना लाइसेंस वाले कमर्शियल ड्राइवरों के खिलाफ अपने अभियान के तहत एक्स पर आई एआई से बनाई गई तस्वीर का इस्तेमाल किया था। इसमें दाढ़ी वाला एक सांवले रंग के व्यक्ति को दिखाया गया था और लिखा था, हमारी सड़कों से चले जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता मिस्टर सिंह। जी हाँ, इस विज्ञापन पर भारतीय अमेरिकी और सिख अधिकारों की वकालत करने वाले संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी इसका विरोध जताया है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
8: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
7: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?

0: at Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewellery needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब इसी के साथ, आज है फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे कॉल्स फॉर व्हाट, ऑफकोर्स थिएटर्स में क्या लगा है, क्या रिलीज हुआ है इस शुक्रवार आप सबके लिए, और क्या क्या आप देख पाएंगे अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या क्या रिलीज हुआ है? पहले तो बात करते हैं जो चीजें, जो मूवीज पहले से रिलीज हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहले आवारापन 2 अभी भी लगी हुई है थिएटर्स में। जी हाँ, इंडियन मूवीज के बारे में बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। आवारापन 2 जो है वो थिएटर्स में लगी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी के साथ मिर्जापुर भी लगी हुई है। नाउ मिर्जापुर जो है वो ऑलरेडी एक बहुत ही जो है वो हिट शो है, सुपर डुपर हिट शो, और उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। कल्ट फैन फॉलोइंग अगर हम कहें तो सही रहेगा, क्योंकि लिटरली पीपल लव दैट शो। ऑल्दो उसमें बहुत ज्यादा कर्सिंग है और बहुत ज्यादा खतरनाक सीन्स भी हैं, एंड दैट इज द रीजन यू कांट वॉच इट विद योर किड्स और योर फैमिली। यू कैन ओनली वॉच इट विद योर यू नो पार्टनर और ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स, दैट्स इट। सो या मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी फिर से आपको नजर आने वाले हैं, अली फजल जो है वो आपको नजर आने वाले हैं, और जबरदस्त लोग आपको उसमें उसे लीड करते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या मिलने वाला है थिएटर्स में? वेल ऑफ कोर्स उसके अलावा है टॉक्सिक द मूवी। जी हाँ, टॉक्सिक जो है वो थिएटर्स में लगी हुई है और आप उसे देख सकते हैं। टॉक्सिक जो है वो थिएटर्स में लगी हुई है, लेकिन वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जितने बजट में बनी हुई है वो उसका आधा बजट ही अभी तक कमा पाई है, और वो भी आधा भी नहीं कमा पाई है। अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे, अगर हम उसकी पूरी कलेक्शन को देखेंगे, ग्रोस कलेक्शन को, तब वो जो है वो उतना कमा पाई है। अगर हम उसकी नेट कलेक्शन को देखेंगे तो वो उतना भी नहीं कमा पाई है। सो टॉक्सिक आप देख सकते हैं थिएटर्स में, एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। अगेन, दिस इज ऑल्सो नॉट द काइंड ऑफ मूवी यू कैन वॉच विद योर फैमिली। सो ऑफकोर्स आपको फैमिली के साथ वो देखनी नहीं चाहिए। आपका इसको ट्रेलर जो है जरूर देखिएगा पहले, उसी के बाद डिसाइड कीजिएगा। इसमें तारा सुतारिया, यश, साथ में कियारा आडवाणी आपको नजर आने वाली हैं, साथ में नयनतारा इसमें आपको नजर आने वाली हैं, और वो लीड कर रहे हैं इस मूवी को। सो वॉच इट एंड लेट मी नो कि आपको कैसी लगी। अगेन, जैसे मैंने कहा कि कांट वॉच इट विद योर किड्स, कांट वॉच इट विद योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम दैट गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात हो रही है क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, यानी कि थिएटर्स में जाकर क्या क्या आप देख पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑलरेडी लगी हुई थी मूवीज पिछले हफ्ते भी, लेकिन इस हफ्ते क्या क्या नया रिलीज हुआ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले इंडियन मूवीज की ही बात हो रही है, जैसे मैंने कहा हैवान। जी हाँ, हैवान जो है अक्षय कुमार और सैफ अली खान की एक मूवी है जो कि थ्रिलर है, क्राइम है, एक्शन है, ये जॉनर है इसका। ये रिलीज हो गई है और इसका आप ट्रेलर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको देखनी है या मूवी या नहीं। वेल ऑफ कोर्स ये थ्रिलर्स का ही सीजन है, मुझे लगता है पिछले एक साल से डेढ़ साल से थ्रिलर्स ही सबसे ज्यादा बन रही हैं, थ्रिलर्स ही लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मूवी द लास्ट मैन इन टावर, मनोज वाजपेयी की एक्टिंग के अगर आप फैन हो तो वो भी रिलीज हो गई है। जी हाँ, ये प्योर ड्रामा मूवी है, आप इसे देख सकते हो। दिव्या दत्ता है इसमें, बोमन ईरानी भी आपको मनोज वाजपेयी के साथ इसमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लेकिन एक मूवी जिसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन दे रही थी, दैट इज हनुमान अंश। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 150 करोड़ के करीब ये मूवी पहुंच गई है। ये मूवी जो कि लिटरली बहुत ही कम पैसों में बनी है, पहली बार प्रोड्यूसर बनी, पहली बार एक्टर बने इसमें जो एक्टर हैं, और उन सब ने मिलकर इस मूवी को बनाया है। बजट बहुत कम था लेकिन फिर भी शिद्दत पूरी थी और आई थिंक हनुमान जी का आशीर्वाद था कि मूवी जो है इतनी ज्यादा हिट हो गई है। ये मूवी है एक बहुत ही बड़े फेमस और बहुत ही पूजे हुए बाबा नीम करोली बाबा जी की स्टोरी पे। जी हाँ, ये कहानी है उनकी जिंदगी पर और कैसे वो अपनी जर्नी पे गए और कैसे उन्होंने इतने सारे और लोगों को इंस्पायर किया, फिर चाहे वो विराट कोहली हो, फिर चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, बेसिकली ये लोग तो उनसे मिल भी नहीं पाए थे। जूलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स से लेके मार्क जुकरबर्ग, सबको इंस्पिरेशन वहां से मिली। इनफैक्ट एप्पल का लोगो भी वहां से आया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन सबको छोड़ के भी वो कितने अच्छे थे और वो क्या क्या नहीं कर सकते थे, उन्हीं की ये कहानी है, लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी है। जी हाँ, जरूर देखिए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं हॉलीवुड मूवीज तरफ। तो द ऑडिसी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग इन थिएटर्स, मतलब इस मूवी को रिलीज हुए तो 2 महीने ही हो गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मूवी जो है वो अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है, कुछ चुनिंदा थिएटर्स में ही है और एक आध शो ही आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने ये ग्रीक माइथोलॉजी पर बनी हुई मूवी नहीं देखी है जिसमें मैट डेमन और साथ में बहुत सारे कलाकार, फिर चाहे टॉम हॉलैंड हो, फिर चाहे एन हाथवे हो, ज़ेंडेया हो, चार्लीज़ थ्रोन हो, रॉबर्ट पैटिनसन हो, लुपिटा नियांग हो, ये सब के सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू Today is also still going strong in theaters. अगेन, मुझे लगता है अभी तक तो सबने इस मूवी को देख लिया होगा, नहीं देखी है तो जरूर देखिए, अपने बच्चों के साथ जाइए और फिर एंजॉय कीजिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। इसी के साथ फॉल टू डेड पॉइंट, एक और मूवी जो कि थिएटर्स में आ गई है और ये है एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर अगेन, और ये लिटरली आपको बहुत सारे इमोशंस जो है वो आपको फील करने पर मजबूर करने वाली। और इसके अलावा अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो पिछले 2 हफ्ते से एक मूवी रिलीज हुई है, उसका नाम है इंसीडियस आउट ऑफ द फादर। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, ये भी आप देख सकते हैं। इट्स अ हॉरर मूवी एंड यू आर गना बी सो अफ्रेड। जी हाँ, सो अगर आपको डरावनी मूवीज पसंद है तभी आप इसे देखिएगा, बिकॉज द हॉरर एंड थ्रिलर इज द जॉनर ऑफ द मूवी। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। ये सारी की सारी चीजें आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं इस हफ्ते और इस वीकेंड। इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, जो कि हमारे ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआत के लिए हम प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, सो ऑफिशियली ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है, पुराने गाने पुराने किस्से। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है जो पुराने गानों से रिलेटेड है तो उसे लेकर आ जाइए, और क्योंकि बरखा हो रही है तो यहां पर ये गाना तो जरूर होना चाहिए था।

जी हाँ दोस्तों, आरसी के साथ एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम के दौरान आशा पारेख जी से एक व्यक्ति पूछता है कि आशा जी, पर मुझे ये बताइए कि जो हमने चीजें सुनी हैं, जो हमने बातें सुनी हैं कि पर लड़कियां इतना मरा करती थी कि उनकी गाड़ियों पर चुंबन के निशान छोड़ जाती थी, लिपस्टिक के निशान छोड़ जाती थी, क्या ये बात सच है? तो आशा पारेख जी सामने से बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल सच है, मतलब इसमें कोई भी दोराय नहीं है और कुछ भी झूठ नहीं है। मुझे आज भी याद है कटी पतंग की शूटिंग हम कर और हमारा शूट जो है वो चल रहा था, और फिर एकदम से राजेश खन्ना एंट्री लेते हैं तो वहां पर भीड़, और भीड़ मने औरतों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शूटिंग को रोकना पड़ जाता है, हम शूटिंग कर ही नहीं पाए। जी हाँ, मतलब लड़कियां उनके पीछे इतनी ज्यादा दीवानी थी कि लड़कियां उनको शूटिंग ही नहीं करने देती थी, शूटिंग जो है ऐसी जगहों पर रखनी पड़ती थी जहां पर लड़कियां उन तक पहुंच ही ना पाए। मतलब आप सोचिए कि लोग लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए, या बंदे जो है वो लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करते थे। यहाँ पर राजेश खन्ना तो खुद ही अटेंशन का सबसे बड़ा स्रोत थे, सोर्स थे। मतलब वो आते थे तो फिल्म की शूटिंग जो है वो ठप हो जाती थी थोड़ी देर के लिए, लाइक लिटरली उस क्राउड को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता था। तो जो ये कहानियां हमने सुनी है कि लिपस्टिक के निशान जो है वो छूट जाते थे, छोड़ जाती थी जो अभिनेत्रियां, क्योंकि ऑफ कोर्स राजेश खन्ना तो वो किस नहीं दे सकती थी, तो उनकी गाड़ी को ही किस दे जाया करती थी, और साथ में ये भी कि उनके ड्राइवर को उनकी गाड़ी जो है वो रोज साफ करनी पड़ती थी, इसलिए नहीं क्योंकि उनको रोज गाड़ी साफ करना पसंद था, इसलिए क्योंकि उनकी गाड़ी जो कि सफेद चकाचौंध होती थी वो गुलाबी ही हो जाती थी, क्योंकि जितनी भी लेडीज थी वो उस पर चुंबन के निशान जो है, लिपस्टिक के निशान जो है वो छोड़ जाती थी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और शो चल रहा है इवनिंग वाइब। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक और किस्सा है जो बहुत ही खूबसूरत है और शायद आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपको ये किस्सा सुनाना चाहती हूँ। सो आपने सुना होगा गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना है राज कपूर का और नरगिस का। उसमें एक लाइन आती है कि मैं ना हम ना रहेंगे, तुम ना रहेंगे, और फिर उसके बाद वो एक दिशा की तरफ देखते हैं, एक साइड की तरफ देखते हैं, और फिर भी रहेंगी निशानियां। जी हाँ, तो जो छाता पकड़कर नरगिस जो है वो छाता पकड़कर वहां खड़ी होती है। आरके स्टूडियो में इस गाने की शूटिंग चल रही थी और साथ में राज कपूर जो है वो उनको देखकर वो भी उसी तरफ देखने शुरू कर देते हैं जिस तरफ वो निशानियां बोलकर जो है वो देखती हैं। वहां पर तीन बच्चे जो है उस गाने में जा रहे हैं और वो तीन बच्चे जो है बारिश चल रही है उसमें रेन कोट पहनकर जा रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, बच्चे तो थे उसमें क्योंकि हमने भी देखा है, बट शायद आपको नहीं पता होगा कि वो राज कपूर के खुद के बच्चे थे। जी हाँ, मतलब डब्बू यानी कि रणधीर कपूर, ऋतु नंदा, जी हाँ, और तीसरे चिंटू यानी कि ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर की तो उम्र सिर्फ 2 साल थी उस वक्त, मतलब छोटे छोटे थे ये सभी, तभी वो इस फिल्म में कैमियो करने आए थे। अब उन्हें कहा गया था कि जब हम निशानियां वाली बात बोलेंगे, ये निशानियां बोलेंगे, तब तुमको उस तरफ से चलते हुए जाना। अब शूटिंग शुरू हुई, नरगिस और राज कपूर ने अपना काम कर दिया और वो उस तरफ देखने लगे जिस तरफ बच्चे थे। अब बच्चे चलकर आ रहे हैं लेकिन उसमें 2 साल के चिंटू यानी कि ऋषि कपूर बहुत छोटे थे और वो एकदम से अपनी बहन का हाथ छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ चल जाते हैं। और वहां पर जो मशहूर कैमरामैन थे वो फटाफट जो है उस टेक को कट कर देते हैं और फिर राज कपूर जाते हैं जल्दी से और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो राज कपूर को उनके बेटे जो है वो कहते हैं कि पता नहीं इसने हाथ छोड़ दिया। जी हाँ, क्योंकि चिंटू यानी कि ऋषि कपूर बहुत ही ज्यादा छोटे थे उस वक्त, तो वो तो जवाब नहीं दे पाए लेकिन उनके बड़े भाई और बहन ने जवाब देने की कोशिश की। फिर से सीन शुरू होता है, शॉट लगता है, फिर से जो है वो शुरू होता है वो पूरा का पूरा सीन। यहां पर वो निशानियां वाली लाइन फिर से आती है, राज कपूर और नरगिस फिर से उनकी तरफ देखते हैं और उनको चल के आना है, लेकिन इस बार फिर से जो है वो उनका हाथ छोड़ देते हैं, यानी कि चिंटू यानी कि ऋषि कपूर अपनी बहन का हाथ छोड़ देते हैं और बड़े ही अच्छे से अपनी आंख को मलना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, और आंख को मलते मलते वो सीन जो है वो फिर से काटना पड़ता है। अब फिर से राज कपूर उनकी तरफ जाते हैं और इससे पहले वो चिढ़ने वाले थे, वहां पर नरगिस भागी भागी जाती हैं और वो कहती हैं कि देखो सबसे पहले तो मैं तुमको ये कैडबरी चॉकलेट दे रही हूं। जी हाँ, दोनों को यानी कि डब्बू यानी कि रणधीर कपूर और ऋतु नंदा को वो कहती हैं, लेकिन वो चिंटो यानी कि ऋषि कपूर को कहती हैं कि मैं तुमको चॉकलेट तब दूंगी जब तुम अपने भाई बहन का हाथ पकड़ के सीधा उस लाइन में जाओगे। बस फिर क्या था, वो डांटती नहीं है, वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ इतना बोलती है कि मैं तुमको चॉकलेट दूंगी अगर तुम अपने भाई बहन का हाथ नहीं छोड़ोगे, कुछ नहीं करोगे और सीधा उस इधर से उधर जाओगे। बस फिर क्या था, उसी लालच में ऋषि कपूर जो उस सीन को कंप्लीट कर देते हैं और ना सिर्फ कंप्लीट करते हैं बल्कि बहुत ही बखूबी कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से नरगिस वहां पर प्रूव कर देती है कि कितनी प्यारी वो थी, उनके जो मन में ममता थी और कैसे वो बच्चों को हैंडल कर सकती थी, वो चीज रिमार्केबल थी। मतलब राज कपूर अपनी जो है वो वहां पर पेशेंस लूज करने वाले थे, वो लिटरली डांटने वाले थे, लेकिन उससे पहले नरगिस उस सिचुएशन को पहचान जाती हैं और वो डांटने नहीं देती है। इनफैक्ट वो जाती हैं और वो कहती हैं राज कपूर को कि मैं देखती हूँ। जी हाँ, सो या इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, और आप गेस कर सकते हैं, जी हाँ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी गाने का, लेकिन वो हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। जी हाँ, दिस इज द गेस, आप जरूर मुझे गेस करके बताइएगा। हिंट जो है मैंने आपको दे दिया है, गेस करके आपको बताना है। और इसी के साथ अब आपसे मुझे विदा लेनी है क्योंकि मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी अब कल टॉप 10 हॉट 10 में, और फिर मिलना होगा आपसे इवनिंग वाइब में मंडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल फनी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, खाते रहना है, सुनते रहना है रेडियो ब्रिस्वानी को। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651. ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801।
2: प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में CFMEU हेडक्वार्टर पर पुलिस का छापा। क्वींसलैंड पुलिस ने बोवेन हिल स्थित ब्रिस्बेन दफ्तर पर कार्रवाई की। जी हां, CFMEU के ब्रिस्बेन दफ्तर पर कार्रवाई की। पुलिस मामले से जुड़ी जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। वहीं ब्रिस्बेन में ब्रूस कप 2026 का सफल समापन। ब्रिस्बेन में आयोजित मशहूर ब्रूस कप जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ। इसमें नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड के युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारियों में तेजी। साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक गेम्स के बुनियादी ढांचे और स्टेडियमों के पुनर्विकास कार्य की समीक्षा बैठक हुई। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और नए वेन्यू पर काम तेजी से चल रहा है। वहीं ब्रिस्बेन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार। ब्रिस्बेन काउंसिल ने शहरवासियों के लिए सार्वजनिक बस और ट्रेन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नए रूटों का ऐलान किया है, जिससे काम पर जाने वाले यात्रियों की को बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साउथ बैंक में स्प्रिंग कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत। ब्रिस्बेन के खूबसूरत साउथ बैंक इलाके में बसंत ऋतु के स्वागत के लिए स्पेशल कल्चरल और फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जहां स्थानीय और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का नया ग्रीन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ब्रिस्बेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने क्लीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर रिसर्च के लिए एक नए आधुनिक ग्रीन टेक सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में ब्रिक्स समिट का धमाकेदार आगाज। राजधानी दिल्ली में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से शुरू हो चुका है। भारत मंडपम में दुनिया के बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि इस सम्मेलन में वैश्विक भलाई के लिए बेहद सकारात्मक और अहम फैसले लिए जाएंगे। वहीं सुरक्षा के चलते दिल्ली में सरकारी छुट्टी और ट्रैफिक डायवर्जन। ग्लोबल लीडर्स की मौजूदगी को देखते हुए पूरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा रखी गई है। सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए आज दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, स्कूल और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहेंगे। वहीं 7 साल बाद भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 7 साल बाद लंबे अंतराल के बाद भारत आ रहे हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार रिश्तों को सामान्य बनाने पर खास बातचीत हो सकती है। वहीं पुतिन मोदी मुलाकात, ट्रेड और एनर्जी पर बड़ी डील की उम्मीद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें एनर्जी और आपसी व्यापार बढ़ाने पर बड़े समझौते हो सकते हैं। वहीं 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। जी हां, देशवासियों के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र से एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि साल 2035 तक भारत के पास अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। जी हां, सबसे पहले पश्चिम एशिया में तनाव से क्रूड ऑयल $100 के पार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई हैं। वहीं ट्रंप का अमेरिकियों को $5,000 का बड़ा वादा। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कार्ड खेला है। उन्होंने वादा किया है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों पर नियंत्रण बनाए रखती है तो हर बालिग अमेरिकी नागरिक को $5,000 दिए जाएंगे। वहीं रोम से शुरू हुआ दुनिया का सबसे लंबा क्रूज सफर। नॉर्वेजियन कंपनी का रिगेटा क्रूज शिप रोम से रवाना हो चुका है। यह इतिहास का सबसे लंबा क्रूज सफर होगा, जो 371 दिन यानी कि 371 दिनों तक चलेगा। इसमें यात्री 6 महाद्वीपों के साथ 62 देशों और 220 से ज्यादा बंदरगाहों की यात्रा करेंगे। वहीं आईफोन 17 सीरीज की कीमतों में बढ़ोतरी। नई आईफोन मॉडल की लॉन्चिंग के बाद एप्पल ने अपनी आईफोन 17 सीरीज के अलग अलग मॉडल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। भारत में भी अब आईफोन 17 और एयर मॉडल्स की शुरुआती कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में बढ़े रोजगार के मौके। दक्षिण कोरिया से आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। अगस्त महीने के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजगार पाने वालों के लोगों की संख्या में 1,84,000 यानी कि 1,84,000 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नॉर्वे में प्राइवेट रॉकेट लॉन्च का नया प्रयोग। यूरोप के एयरस्पेस सेक्टर में बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। इसार एयरोस्पेस के स्पेक्ट्रम रॉकेट ने नॉर्वे के लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक उड़ान भरकर अंतरिक्ष की कक्षा में अपनी जगह बना ली है। वहीं अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में। महिला एशिया कप में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर शान से फाइनल में एंट्री मार ली है। इसके साथ तान्या चौधरी ने हैमर थ्रो में तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। वहीं भारतीय हॉकी टीम की पाकिस्तान पर 19-0 से ऐतिहासिक जीत। जूनियर महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 19-0 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। वहीं चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन की भविष्यवाणी। शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन ने कहा है कि भारत के गुकेश के पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का हुनर है, लेकिन उन्हें सिंधारोव से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Subah se shaam tak.
2: What, I will dance? My dance shall speak for me.
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर सुपर फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा या
2: या
3: ओके सॉन्ग
2: सॉन्ग अब लाउड या
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आलम फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818
6: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन
7: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132ANT यानी के 132268 उते कॉल करो ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन
8: मैं निकला

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਆਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
1: ਥੈਂਕਸ ਟਨ ਵੀਰੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो उमसॉक से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई
3: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्गुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
1: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
1: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा ओके
2: सॉफ्ट
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान ते छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दीआं गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नूं रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इस तैयार किया। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नूं पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नूं जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानूं कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुणियो, पर मैं तुहानूं इस दी कहानी मैं सुणा दिंदी आ। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुणियो।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसन ओवन एम ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए। अगली जिहड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान की। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, यह कहा जाता है। तो कहा जाता है कि कहानी कितने ना कि उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। यह गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नूं बयां करता हैगा। इस औरत नूं तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता, कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलो गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दस दिया उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

0: अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते 4 संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 1.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिराल से बने हुए हूँ। देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो उन्होंने इन्ना कुछ दास्ता है का है, तो उसी देखियो जरूर एक बार गीत, तो तुसी जेडे घर दे विच बुजुर्ग होंगे ना शायद उन्होंने कुछ पता हो या फिर गूगल करो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई हैं, जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी, पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दिती सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह, जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन!
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
1: हिल मत चिल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा या
1: या
2: ओके सॉफ्ट
1: या सॉफ्ट
2: या
1: अब लाउड या
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachchon ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701 651.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Cheap care.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
4: हिल मत चिल
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
4: या
3: या,
4: या।
3: Okay, soft.
4: Yeah, soft.
3: Yeah.
4: Up loud. Yeah.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132ANT यानी के 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi guys, I'm Madhmeet from the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, I'm Tulsi Kumar. And you are listening to Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Briswani.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
3: किरण, आई लव यू किरण।
4: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्जन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले On the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com. फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
3: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

0: What you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नमक कार्यक्रम।

तो प्रिय श्रोतागण, मैं परमानंद हूँ और स्वागत है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम में। आज 12 सितंबर सन 2026 है, सुबह का बेला है हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। और सर्वप्रथम आपको बतला दें कि हमारा स्टूडियो का नंबर है 3279-1701। अगर आपको बात करनी है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह भेजना है या कुछ और खबर पहुंचानी है, तो आप 0411-127-035 पर कॉल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलें, इस समय वही समय आया है जबकि हम मौसम के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और आज मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने हमें निम्न खबरों को प्रदान किए हैं, जिसके अनुसार 5:50 पर सूर्य उदय हुआ है ब्रिस्बेन में और 5:40 पर सूर्यास्त होगा। जो लोग घाट छोड़ चुके हैं, सैर वगैरह कर रहे हैं, रास्ते पर हैं या नौकरी करने निकले, वो देख रहे होंगे कि ब्रिस्बेन में आकाश पर घटा छाई हुई है, यहाँ वहाँ एक दो बूंद बारिश भी हो रही है और ऐसा ही मौसम है। ज़्यादा धूप निकलेगी, समय समय पर आकाश पर घटा छाई रहेगी और यहाँ वहाँ कुछ फुहारें बरसेंगी। तापमान के भी समय जानना चाहेंगे तो आज 22 डिग्री दिन में रहेगा, रात्रि को 14। हवा का रफ्तार जो है वह 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। इस सूची में ज़्यादातर समय समय पर आकाश पर घटा छाई रहेगी और फिर साथ में यहाँ वहाँ आप देखेंगे कि कुछ हल्की फुहारें बरस रही हैं, अन्यथा धूप निकलेगी। 22 दिन में रात्रि को 12, हवा का रफ्तार भी 15 से 25 और सनशाइन कोस्ट में हल्की बारिश होगी। 20 दिन में रात्रि को 15, हवा का रफ्तार 15 से 20 और गोल्ड कोस्ट में ज़्यादातर धूप निकलेगी, यहाँ 22 दिन में रात्रि को 13 और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु बहेगी। नेंडी आपको ले चलते हैं फिजी द्वीप, जहां पर 6:09 पर सूर्य उदय हुआ है और 6:03 पर सूर्यास्त होगा। यहां धूप निकलेगी और 26 दिन में रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 27। लंबासे में इसी प्रकार मौसम होने के साथ साथ 27 दिन में रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 21 और सुबह में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी। ठंड है, थोड़ा ही तापमान वहाँ ज्यादा है हमारे यहाँ ब्रिस्बेन से, यानी कि 23 डिग्री है वहाँ पर दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 23। ओकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते हैं, जहां पर 6:24 पर सूर्य उदय हुआ है और 6:10 पर सूर्यास्त होगा। हवा की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, आकाश पर घटा छाई हुई है, 16 दिन में रहेगा, रात्रि को 12 और वेलिंगटन में ज्यादातर धूप निकलेगी, यहां 13 दिन में रात्रि को 7, हवा की रफ्तार 23। अब ले चलते नई दिल्ली, जहाँ बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, 33 रहेगा दिन में, रात्रि को 27, हवा की रफ्तार 13। 6:03 पर सूर्य उदय होगा और 6:31 पर सूर्यास्त होगा। अमृतसर में धूप निकलेगी, 33 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 8 विंड स्पीड। और मुंबई में बारिश होती रहेगी और 30 दिन में, रात्रि को 26, हवा का रफ्तार 16। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका सप्ताह अच्छी तरह से बीता होगा। और अब सप्ताहांत आ चुका है और मौसम भी साथ तो आज उतना नहीं दे रहा है, लेकिन यही कहो कि चलो भाई ठंड रहेगा, बाग बगीचे में अगर कुछ काम करना है गार्डन वगैरह में तो कर सकते हो, घास तो नहीं काट पाओगे क्योंकि बारिश समय समय पर हो सकती है, कपड़े धोने की चिंता होगी, घर के अंदर ही आप उसको सुखा सकेंगे। तो ये थे कुछ बातें आपसे, और आज राव जी नहीं आएंगे, वो व्यस्त हैं, तो हम कुछ गीत वगैरह से आपका मनोरंजन कराते रहेंगे। तो चलो आज का जो पहला गीत है आपके लिए, वो मैं आपके लिए पेश करूंगा किनके आवाज में, मोहम्मद अजीज साहब, साधना सरगम जी के आवाज में। तो चलो सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, और जो लोग हमारे देश विदेश से सुन रहे हैं उनको भी वेरी वेरी बिग वेलकम टू यू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारे यहाँ शाम होगी, यहाँ शाम हो रही होगी या रात्रि होगी, यहाँ कहीं दिन चढ़ा हुआ, जैसे 2 घंटे फिजी आगे है, 4.5 घंटे भारत पीछे है और अमेरिका वगैरह में शाम है इस समय।

0: जी मित्रों, आपके आ जाने से आप सुन रहे थे और इसके साथ 6:40 हुए हैं और मैं परमानंद रेडियो ब्रिजबानी पर और आप सुन रहे हैं संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। चले आगे बढ़ते हैं कुछ विज्ञापन के साथ। तो पहला विज्ञापन पेश है आपके लिए।
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस, माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
1: शाम से रात्रि तक
3: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा। लगा कैसा?
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
3: हिल मत चल।
4: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा? ओके
3: सॉफ्ट।
0: जब मित्रों आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चले दूसरा गीत जो आज का है उसे उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी, जी हाँ अलका याग्निक ही हैं दोनों। सांसों का चलना दिल का मचलता, ये गीत के बोल हैं आपके लिए।

0: जी मित्रों, ये था फिल्म जीत का गीत जो अभी आप सुन रहे थे। और आगे बढ़ते हैं विज्ञापन एमसीज इंडियन एंड आलियन फूड का खबर।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ एमसीज इंडियन एंड आलियन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: एमसीज इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: 13 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, चलें आगे बढ़ें। अगला गीत उदित जी, अवलका जी अदा कर रही हैं, मेरे महबूब मेरे सनम।

0: जी मित्रों, फिल्म डुप्लीकेट का एक गीत आप सुन रहे थे और चलें आगे, हम आगे बढ़ते हैं एक और खबर के साथ। रेडियो ब्रिजबानी पर यह खबर।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: ये मित्रों चले आगे और आगे बढ़ते हैं कहो ना प्यार है का शीर्षक गीत अलका जी और साथ में उदित।

0: तो मित्रों ये था टाइटल गीत कहो ना प्यार है फिल्म का, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ये पहला सेगमेंट का था प्रोग्राम जो हम ये समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। विज्ञापन चलें कुछ ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद हम आपको पुराने गीतों की तरफ लेकर चलेंगे। तो चलो पहला ये खबर, दो खबर लेंगे।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है, इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: जी मित्रों ये दो बार है, इसको छोड़ते हैं चलें अगले।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
0: मित्रों रेडियो ब्रिस्बेन की घड़ी में 7 बज चुके हैं और मौसम पर नजर डालते हैं एक बार फिर। मौसम की खबरों में आज कहा गया कि ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, यहाँ वहाँ शायद एक दो बूंद बारिश हो, अन्यथा कहीं कभी समय समय से धूप दिखेंगे आप, और बाहर वगैरह थोड़ा ठंड रहेगा। और बाकी तो विस्तार से हमने सुबह मौसम की खबर बतला दिए थे। तो चलो पुराने गीतों में अब हम आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, सबको स्वागत करते हुए नमस्कार सत श्री अकाल और सलाम भेंट रहे हैं। पहला जो गीत है, मालूम नहीं क्यों सोचा मैंने आज एक गीत से शुरू करता हूँ। कभी कभी हम दिन बीत जाता कुछ किसी के इंतज़ार में या तनहाई फीलिंग आती है ना, फील करते रहते हैं। तो चलो देखें लता जी क्या कहती हैं।

जी मित्रों, फिल्म तेरे घर के सामने का बड़ा ही लोकप्रिय गीत अभी आप सुन रहे थे, और देवानंद साहब और नूतन एक दूसरे के आमने सामने पर्दे पर, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ठीक लगा होगा, और अब रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं। चलें शमी कपूर जी के साथ, आशिक हूँ एक महेश जबी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का।

0: तो मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबान ही आपकी अपनी पहचान। और मैंने पहले आपको कहा कि राव जी आज नहीं है, वो व्यस्त हैं आज। तो पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो उनका स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, रेडियो ब्रिजबानी पर आपका तहे दिल से स्वागत है, सादर प्रणाम आपको।
1: परमा जी, आपको भी प्रणाम और सुनने वालों को नमस्कार करते हैं। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो मौसम है भीगा भीगा सा है, लेकिन अचानक से अब धूप भी निकल गई है, तो शायद क्रिकेट का गेम जो हो रहा है इधर उधर, जो भी कुछ गेम में शायद चलता ही रहे ऊपर वाले की कृपा से। तो ब्रह्मा जी, हम देख रहे हैं कि हमारे जो समाज है, हमारे जो भावी संतान है, और जो हमारा जतीश जी से भी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोग, और सनातन में भी हम बात कर रहे हैं कि हमें यूथ से मनाए करना है कि जो हमारे भावी बच्चे हैं, जो हमारे भावी पीढ़ी है, वो कैसे हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे उसको समझ पाएंगे। क्योंकि ये भी बड़ा अफसोस की बात है कि जो लगभग 40-50 के उम्र वाले हो रहे हैं या 30 से ऊपर है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि अगर हमारे घर में किसी का मृत्यु होगा या शादी विवाह का माहौल है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा संस्कृति सभ्यता और समाज किधर जा रहा है। वर्मा जी
0: जी, पंडित जी,
1: तो ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि हम लोग कभी अब जाते हैं और बातें, हम लोग तो अक्सर आप भी जाते हैं ना, जो मैरिज सेलिब्रेट के तरह
0: जी,
1: तो बच्चे हैं उनको भी हम लोग को समझाना है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो भाषा है, उसको लेकर ही आगे बढ़ना, तभी हमारा जो चाहे सनातन धर्म बोले या भारतीय संस्कृति बोले, इसका आगे हम बढ़ा सकेंगे। नहीं तो ये तो बस शायद 5-10 साल में सब लुप्त हो जाएगा।
0: सही आपने कहा पंडित जी, सही है, सच है।
1: क्योंकि अब शादी विवाह में अब और अंत्येष्टि में अगर बच्चे नहीं जानेंगे कि हमारा हमें क्या करना है, क्या क्या हमारा स्टेप्स है, कैसे कैसे अंत्येष्टि क्रिया या विवाह संस्कार करना है, जो तो सब वही होगा कि आप मेरी सेलिब्रेट बंद कर देंगे, कोई एक पुरोहित आएगा या शायद अपने आप कोई अंतिम संस्कार कर देंगे, बस वहीं से खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा, फिर हमारा जो धार्मिक रीति रिवाज है, सभ्यता है, सब जो छूट जाएगी। वर्मा जी,
0: पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। एक बात और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप बोलना चाहता उचित समझता हूँ, कि हमारे जो लोग हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने से आकर यहाँ बसे हैं, एक वो हमेशा कहते रहते हैं, आप सब शेयर कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, उनको भी बतलाना चाहूँगा कि जो बोलते हैं कानूनी, आप जानते हैं दो तरह का ब्याह होता है, एक तो धार्मिक हमारा होता है कम्युनिटी, और दूसरा है कानूनी, जिसको लीगल मैरिज सेरेमनी बोलते हैं, समझ गए। तो लोग जब लीगल सेरेमनी, जैसे हम लीगल करने जाते हैं, तो लोग बड़े से छाप देते हैं कि आज हमारी एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट नहीं है भाई, तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन कानून के मुताबिक आपका ऑलरेडी लीगल ब्याह हो रहा है। अब जब पंडित जी आएंगे तो पंडित जी आपका धार्मिक जो ब्याह है वो कराएंगे। तो लोगों को ये मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप जब ये अपना इनविटेशन कार्ड वगैरह छापें तो लिखें लीगल सेरेमनी, लीगल मैरिज सेरेमनी या रिलीजियस मैरिज सेरेमनी, जो भी है, जैसे भी है, ताकि लोगों को मालूम हो। तो लोग इसमें, और फिर जब हम पहुंचते हैं, आपको ये भी बोल दूं कि जैसे आपने सही कहा कि लोगों को कानून नहीं मालूम है, ठीक है, तो जो आप बोल रहे हैं कि वो मिक्स करते हैं दोनों, लेकिन जो सिविल सेरेमनी जो हम करते हैं उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके साथ तो मैंने कई शादियां कराई हैं, और आपने देखे कि हमने वो गार्लैंड एक्सचेंज, ये सब सिंदूर दान और मंगलसूत्र, ये सब कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जैसे आपने कहा कि विस्तार से समझाना पड़ता है कि क्या क्या नियम है, क्या आप करते हैं और किस तरह से करना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो। तो यहीं पर मैं बोलता हूँ कि हमेशा वो सलाह मशवरा पंडित जी से करके, अपना तिथि वगैरह देखकर, जो लोग विश्वास करते हैं कि हमें तिथि देखना है या होरोस्कोप से मैच करना है, वो सब कर लें, और फिर शादी करने के लिए कानूनी ब्याह जो होती है उसको एक महीना एडवांस नोटिस देना पड़ता पंडित जी, तो एडवांस नोटिस के बाद ही हम कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैंने सोचा चलो आप ये मौके पर छेड़ें, बात तो मैं बोल थोड़ा सा ये बतला दूं, क्योंकि अभी भी हमारे लोगों को ये मालूम नहीं है और वो दोनों मिक्स कर देते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं हमारा हो गया है, हमारा रजिस्टर हो गया, लेकिन जो लोग अथॉरिटी ने तो रजिस्टर नहीं करते ना, तो वहाँ पर फिर बच्चे फंस जाते हैं। कभी कभी किसी घर में शादी के बाद रिलीजियस मैरिज के बाद बच्चा पैदा हो जाता है या संतान पैदा हो जाता है, तब वो सोचते हैं कि भाई अब जाते हैं रजिस्टर कराने, तो बोलते हैं नहीं वो इज द मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये सब चक्कर में आ जाता है। आपने अच्छा विषय छेड़ा है आज, तो ये सब कुछ बातें थे पंडित जी, बट आप सही बोल रहे हैं कि अगर हम अपना भाषा कायम नहीं रखे, घर में अपने भाषा में नहीं बात किए, तो हमारा जो अभी हमारा एक एडवांटेज होता है ना कि हम कहीं बैठे हैं कुछ हमें गुप्त बात करना है, तो हम लोगों को बोल देंगे कि आई एम गोइंग टू टॉक इन माई ओन लैंग्वेज। जैसे मकान आप खरीद रहे हो या गाड़ी खरीद रहे हो और सेल्समैन के सामने हो और वो बोलते हैं कि चलो 90,000 का गाड़ी है ये और आप यू वांट टू बाय और नॉट, तो आप सलाम उसूर अगर पत्नी बैठी या बच्चे बैठे आप उनसे हिंदी में पूरी बोल सकते हो कि क्या सोच रहे हो, इन्हों 90,000 है क्या सोच रहे हो, तो बोलते हैं नहीं नहीं डेडी नहीं नहीं 90 नहीं 70 वाला खरीदते हैं ना। तो ये हमारा एक एडवांटेज है, भाषा का एडवांटेज है, संस्कृति है, पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं हमेशा घर में, और हमें एक अच्छे अच्छे आदतें हमें सिखलाई गई हमारे ग्रंथों द्वारा। तो ये मुझे थोड़ा सा आप में जोड़ना था पंडित जी।
1: आपने यहाँ बुक गए तो यही लेकर हम भी अपने बच्चों से भी सलाह मशवरा कुछ किए हैं, उनको भी बोले कि आप लोग भी कुछ हमें पॉइंट्स दें, क्योंकि हमारे बच्चे भी अब लगभग 40 साल के हो गए ना सब
0: जी,
1: तो उनको भी खास बातें नहीं पता है, जरूर मैं पंडित हूँ लेकिन जो नीटी ग्रीटी बोलते हैं ना, जो छोटी छोटी बात है, ब्लू प्रिंट्स है, वो उनको नहीं पता है कि हमें अक्सर क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन हुआ हम घर बैठे थे, हम लोग हरदम कुछ होता है तो सब पूरी परिवार आते हैं, तो बच्चे बोल रहे थे कि हमारे लिए लिख दो कि हमें क्या क्या आपका टेस्टी क्रिया कैसे किया जाएगा, हमारा जो मकान है प्रॉपर्टी है सब भाई बहन के सामने बैठ कर बात कर लो, हम क्या करेंगे उसको ना, ये नहीं कि हम अचानक से अगर हम चले गए तो बच्चे सोचेंगे कि अब क्या हो, कितने परिवार घर में यही लड़ाई है कि प्रॉपर्टी का सेया कैसे बटेगा, क्या होगा, जो आप विल वगैरह बोलते हो, तो ये सब बहुत जरूरी बात है, बच्चों को जानना चाहिए जी, केवल नहीं कि हमारा धार्मिक विषय है लेकिन सामाजिक विषय भी जानना चाहिए।
0: जहाँ सही आपने कहा, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम कि हमें वसीयतनामा तैयार करना चाहिए और किसका क्या बांटना, घर में एक बात और निश्चय कर लें ना कि किसको क्या हमें देना है, और फिर जीते जी सब कर देना ताकि उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जैसे आप कह रहे हैं आगे चल के ना पंडित जी।
1: तो यही है, एक हम वर्कशॉप से बिना जतीश जी से भी बातें करेंगे, क्योंकि जतीश जी के भी बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, तो हम सबको सम्मिलित रूप में एक दिन निकालेंगे और फिर देखेंगे, ब्रेन वॉशिंग करेंगे कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं ना।
0: जी जी हाँ, सही कहा आपने, सही कहा, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर पंडित जी एक बात और है, जैसे आप हैं पुरोहित हैं, आप पूजा पाठ कराने जाते हैं, आपके साथ बहुत और हमारे यहाँ पंडित हैं फिजी से, इंडिया से, हमें ये चाहिए जब आप लोग जाते हो, तो मेरा एक निवेदन है आप लोगों से खास की छोटा समय निकाल कर उनको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, थोड़ा सा समझाइए कि क्या क्या हमें करना चाहिए, असलियत में तैयारियां कैसे करना चाहिए पूजा पाठ का। अब मैं जानता हूँ आप लोग करते हो व्यक्तिगत रूप में, लेकिन जब महफिल में पहुंचते हो किसी के घर पर और लोग आते हैं, तो उनको थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए कि क्या क्या जरूरी है, ताकि उनको ये ज्ञान होता रहे और फिर वो ज्ञान वो बांटे।
1: जी, तो मैं भी जब पूजा में जाता हूँ तो कहीं कहीं तो आपका जो हम लोग बोलते हैं ना, कलश है, लोटा है, पत्ते है, सब तैयार होते हैं, और हम तो अब लोगों से बोल रहे हैं कि अगर एक पुरोहित आया बारह, कभी कभी ना जो सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा की पेट है, हनुमान जी का पूजा का पेट है, लोग लाकर सामने रख देते हैं, बोलते सभी कुछ है, हम बोलते हैं ये 2-4 दिन पहले इसको खोल के देखो, उसमें सुपारी है कि नहीं, लवंग इलायची है कि नहीं, एक समय ऐसा आया था कि ये सब बैन हो गए थे, तो अगर कोई पैक है जो इसमें नहीं है तो आप लोग सब सामान कहाँ से पाएंगे ना
0: जी।
1: तो ये सब बातें हैं कि हम कर सकते हैं और जरूरी है हमारे समाज में और बच्चों में लाने के लिए, पर यही हमारी ख्वाहिश है और लोगों की यही होगी। हमारा जो यूथ है उनको हम बटोरेंगे और देखेंगे कि उनको क्या रुचि है, वो धार्मिक बातें जानना चाहते हैं, सामाजिक जानना चाहते हैं, भाषा के बारे में क्या जानना चाहते हैं, यही सब विषय होगा परमान जी।
0: बहुत खूब पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ और कहना है
1: ना? बस मैं बस शायद ये जो प्रोग्राम है हम कोशिश करेंगे जो आने वाली स्कूल हॉलीडे है या इससे कुछ हो कि जाने जो हमारे हाई स्कूल से लेकर और लगभग 40 साल के जो हमारे हमारे बच्चे 50 के भी हो जाते तभी हम ना बच्चे ही बोलते हैं
0: जी।
1: क्योंकि हमारी माँ भी वो हम 60-70 के हो रहे थे तभी हमें भी बोल रही थी कि अभी भी हमारे ये बच्चे हैं ना
0: जी। हाँ
1: तो बच्चे तो सदा ही बच्चे रहते हैं, तो सभी के लिए सीख है वर्मा जी जो हम कह रहे हैं
0: जी। हाँ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का माहौल है अभी, जिस तरह से सब कुछ चल रहा, महंगाई वगैरह, एक छोटा सा प्रार्थना करके फिर जाइए।
1: चलते हैं परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हैं कि वो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा मंगलम सुंदरी काक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते गौरी नारायणी नमस्ते लक्ष्मी नारायणी नमस्ते। उस परम पिता परमेश्वर के आशीष की बाबने सब घर घर में समाज में और सभी को स्वास्थ्य में जीवन प्रदान हो और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में विद्या प्राप्त हो, बल बुद्धि प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद वर्मा जी।
0: धन्यवाद पंडित जी, सदर पन्ना में एक बार फिर आपको
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तो प्रिय श्रोतागण, ये थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी। कुछ हम बातें किए, कुछ ऐसे आवश्यक सब्जेक्ट या शीर्षक थे जिस पर हमने ध्यान को केंद्रित किए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते।

0: वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Ritvin, क्या तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: अमित, इस समय 25 मिनट हुए हैं 7:00 और पुराने गीतों में एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। चलें इस बार दो व्यक्ति की सुर आप सुनेंगे, एक तो लता जी हैं, दूसरे में रफी साहब। छेड़ मेरे हमराई गीत।

0: जी फिल्म में मस्ताना का ये गीत था जो आप रफी जी और लता जी की आवाजों में सुन रहे थे। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 28 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। अब हम याद कर रहे हैं उन लोगों को जिनका जन्मदिन आज है या शादी की सालगिरह है। अगर आपका जन्मदिन है तो बहुत सारे आशीर्वाद और बधाइयाँ हम रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से भेंट रहे हैं, भेज रहे हैं आपको, भेंट कर रहे हैं। और जिनकी शादी की सालगिरह है, हमेशा मैं बोलता रहा हूँ कि आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, बस इतने ही दुआएं मालिक की तरफ से है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका रिश्ता जो है वो बड़ी भांति चल रहा होगा और बढ़िया चल रहा होगा। बस यही प्यार से बातें कर रहे हैं हमें। और चलें आगे बढ़ते हैं, हम एक विज्ञापन लेते हैं, फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाएंगे।
1: Better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
0: और अब हम चलते हैं, गीत खास तौर से पुराना गीत है और आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये चाहे जन्मदिन की बात हो या शादी की सालगिरह, दोनों में, क्योंकि इनके शब्द बड़े अहम हैं, इसलिए

0: जी हाँ, फिल्म का नाम था अकेले मत जाइयो। क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलें खबर ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: पुराने गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ और अगले अब हम चलते हैं 90s के गीतों के साथ। अलका जी सानू साहब आ रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर, रवीना टंडन जी पर्दे पर और वेंकटेश भी मुख्य भूमिका में। लड़की बड़ी है कमाल की,

0: और मित्रों 20 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में, और 8 बजे रानी क्रिएशन का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके लिए लेकर आएंगे, और उसके बाद 8:30 बजे आप सुन सकेंगे निविया जी के साथ टॉप 10।
1: सर्गुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

जी मित्रों, ये शो आज ही है और आप जाइए, सपोर्ट कीजिए ये जो काम कर रहे हैं या म्यूजिक लेकर आए हैं, और इससे जो पैसा उगाया जाएगा उसमें काफ़ी लोगों को भी फायदा होगा। यानी कि कुछ ऐसे जहां पर लोग चपेट में आए हैं बाढ़ वगैरह के, वहां पर तो जाइए, शाम का है, शनिवार है, उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े तादाद में आप लोग उपस्थित होंगे वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं अगला गीत के साथ, बचके मेरी जान कहां तू जाएगी, राठौड़ साहब आ रहे हैं।

0: ये मित्रों बचकर मेरी जान कहां तू जाएगी, बहुत प्यारा सा गीत था आप सुन रहे थे। चलें खबर के साथ आगे बढ़ते हैं।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: 13 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में। आगे बढ़ते हैं। बीबी नंबर वन का गीत है चुनरी चुनरी, अभिजीत और अनुराधा जी इसे अदा कर रही हैं।

0: ये मित्र चुनरी चुनरी आप सुन रहे थे और हम आगे बढ़े हैं। चले दो या तीन विज्ञापन कोशिश करके लेते हैं, फिर कुछ एक गीत और फिर रानी कृष्ण का साप्ताहिक कार्यक्रम 8 बजे से।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003।
0: और दोस्तों, इस समय 7 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और 8 बजने में, और आगे बढ़ते हैं। कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी के साथ गीत अदा कर रहे हैं कि साजन जी घर आए।

0: रुका हुआ है, मालूम नहीं क्यों। तो हम आगे चलते हैं, एक खबर ले लेते हैं, हमारे पास दो मिनट और है, फिर रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम आएगा। चलो एक खबर लेते हैं प्रिंस ज्वेलर्स का।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: ये मित्रों, फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट, अभी आप सुन रहे थे प्रिंस ज्वेलर्स का ये विज्ञापन, और इसी के साथ ही 8 बजने वाले हैं, और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में आपके सेवा में पेश करेंगे। आप सबका स्वागत है रानी क्रिएशंस की तरफ से, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम भेंट कर रहे हैं आपको। और साथ में ये भी कहना है कि भाई आज मौसम थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा भीगा भीगा लग रहा, आकाश पर घटा छाई हुई, बाकी जगह पर थोड़ी सी धूप निकली हुई है। जैसे भी हो, वैसे शॉपिंग करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, 23 डिग्री रहेगा दिन में। थोड़ा गर्म कपड़ा पहन लें, वायु थोड़े झोंके साथ चल सकती है समय समय पर, जबकि 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। तो शॉपिंग के लिए केंद्र बनाइए रानी क्रिएशंस का। कहाँ जाना है ये खबर में सुनिए।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको विशेष छूट मिलेगा कपड़ों पर। हर प्रकार के कपड़े हैं, और उसके साथ साथ बहुत बड़े रेंज में साड़ीज वगैरह भी हैं, तो सब कुछ उपलब्ध है। और एक्सेसरीज में बहुत कुछ है। अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अभी तक रानी क्रिएशंस के शॉप पहुंचे नहीं हैं, तो पता तो आपको मालूम है, 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेबा, और घरेलू वातावरण के तरह आप यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं। पार्किंग की भी कोई चिंता नहीं, पार्किंग भी उपलब्ध है, और सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक आज खुली रहेगी। कल रविवार है, 10 से लेकर 3 बजे तक शॉप खुली रहेगी। बाकी दिन आप सुबह 10 से 4 बजे तक आ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो ये थे कुछ खबर, चलो आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ।

जी मित्रों, आप सुन रहे थे कविता कृष्णामूर्ति और उदित जी की आवाज़ों में ये बहुत ही लोकप्रिय गीत, और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, जहां आपको हर प्रकार के कपड़े और सब कुछ यहां पर मिलेंगे और बहुत ही उचित दाम पर। तो अगर आप पहली बार शॉपिंग करने के लिए सोच रहे हैं और अभी तक रानी क्रिएशंस के शॉप में नहीं आए हैं, तो एक बार आकर देखें, यहाँ पर बहुत कुछ है। सारी वगैरह का बहुत बड़ा रेंज है, इसके साथ साथ हर प्रकार के कपड़े, बच्चों के, मर्दों के, औरतों के, और साथ में शादी वगैरह कर रहे हैं, सूट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगे, इंडो वेस्टर्न भी सूट्स मिलेंगे, कुर्ता पैजामा भी मिलेंगे, पार्टी वगैरह कर रहे हैं, यानी कि फॉर एवरी ओकेजन देर इज समथिंग फॉर एवरी बॉडी। तो चलो, जबकि हम रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम सुन ही रहे हैं, तो अगला गीत है उदित जी और अलका जी का अदा किया गया बहुत खूबसूरत सा गीत है। किसी को हम देखते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं ना, तो गीत में कुछ ऐसा ही है।

ये मित्रों जिंदा दिल 2003 का लोकप्रिय फिल्म का गीत था जो आप सुन रहे थे, और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, जहां आपको सब कुछ मिलता है और आप आकर कपड़े वगैरह यहां खरीद सकते हैं और पैसा का बचत भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप जा सकते हैं रानीक्रिएशंस.com पर और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। गिफ्ट वे भी यहां पर आपको मिलेगा, हर प्रकार के कपड़े और एक्सेसरीज सजने सजाने के लिए, और कपड़ों का पूरे एक्सेसरीज यहाँ उपलब्ध हैं सारे, उसके साथ सब कुछ आपको मिलेगा। तो याद रहे, अगर चिंतित हैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं कि कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, तो रानी क्रिएशन शॉप में आकर एक बार देखिए। पता है 33 बालाकलावा स्ट्रीट ओलंगाबाद। चले अगला गीत के साथ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, समीर कुमार जी और सुनिधि चौहान जी की खूबसूरत आवाजों में।

0: जी मित्रों, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये दिल करा कि ये गीत बजा दूं आपके लिए, तो इसलिए बजा रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा। और आप रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया सुन रहे हैं। और याद रहे, रानी क्रिएशंस में हर प्रकार के कपड़े आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको पैसे का बचत भी होगा। तो याद रहे, अगली बार शॉपिंग के लिए हमेशा नाम याद रखें रानी क्रिएशंस का, 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेवा में आप आकर मनपसंद के कपड़े यहाँ से खरीद सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें, उनका विज्ञापन सुने और उसके बाद समाप्ति पे हम पहुंचेंगे रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम का। और यहाँ पर अप टू 50% ऑफ सेलेक्टेड गार्मेंट्स पर सेल लगी हुई है, जो आप आकर देखेंगे और पैसा का बचत कर सकेंगे। इन अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड। तो अगले शनिवार तक आज्ञा दें। नमस्कार, सत श्री अकाल और अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेवा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
0: So, please, so again, Radio Brisbane ki ghadi mein thik 8:15 hai aur abhi se lekar thik 8:30 tak aap mera saath rahega aur uske baad Nivya ji aa jayengi top 10. Kal aap jante hain ravivar hai aur ravivar ke subah Firoz saab aate hain पुराने गीतों को लेकर और कुछ धार्मिक प्रोग्राम 7 बजे से 8 बजे तक। और उसके बाद नन किशोर दास प्रभु जी आएंगे वेद वाणी को लेकर, फिर जतीश पूरन जी आ जाएंगे 9 बजे से 10 बजे तक, फिर एक बार फिर फिरोज जी आएंगे और फिर 12:30 बजे से रोहित सिंह जी, सुशीला जी 2:30 बजे से। तो ये कुछ लाइनअप है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक मजेदार गीत के साथ, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी। भैया कौन गा रही है? सपना अवस्थी।

0: जी हाँ, मैं खिड़की खोल दूंगी, क्या बात है, क्या प्यारा सा गीत था। और गीत के साथ साथ देख रहे हैं घड़ी की तरफ कि भाई 19 मिनट हो रहे हैं, 8 बजकर, और समय तेजी से भाग रहा। चले पीवा देसी घी का खबर सुनते हैं।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: और मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले एक पुराना गीत और लेकर आए आपके लिए, मोहम्मद रफी जी और लता जी के साथ अदा कर रहे हैं फिल्म आरती का गीत।

जय मित्रों, तेरे बिन साजन लागे न दिया हमार, अभी आप सुन रहे थे। और इसी गीत के साथ साथ समय बहुत करीब आ रहा है, चलें पिया के बाजार में इसे सुनते हैं।

समाप्ति पर हम पहुंच रहे हैं। अगले शनिवार को एक बार फिर आपके सभा में हाजिर होकर मैं एक और सेगमेंट लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए परमानंद को आज्ञा दें, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, वेट फॉर निविया जी। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहला सवाल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, और मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। निव्या शर्मा, वी आर फीलिंग रियली रियली ग्रेट। या मी टू। जी हाँ, हम सब ग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेट फील करने का मौसम है, ग्रेट फील करने का ये समय है और ग्रेट फील करने का ये दिन भी है। सबसे पहले मौसम की बात करें तो मौसम एकदम मजेदार है, जबरदस्त है, स्प्रिंग जो है वो चल रहा है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स वीकेंड है तो और अच्छी बात है, और खुशी की बात है, और एक सेलिब्रेट करने का मौका है। सो बेसिकली ये सारी छोटी छोटी चीजों से हमारी जिंदगी हसीन बनती है। इनको बिल्कुल मत छोड़िए, ये मत सोचिए अरे मुझे कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी तभी मैं हंसूंगा, तभी मैं मजे करूंगा, तभी मैं कुछ अच्छा करने की सोचूंगा। अरे ये छोटी छोटी खुशियां जो है ना, जैसे वीकेंड आ गया, खूबसूरत मौसम है, अगर गर्मी हो बहुत हो रही है तो बारिश हो गई, वाह कितना खूबसूरत है, नेचर सुंदर लग रहा है, फूल खिल रहे हैं, या इन सब चीजों की खुशियां मनाना ही जिंदगी का असली नाम है और यही तरीका है जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने का। सो स्प्रिंग आ गया है, खिलते खिलते चीजों को देखिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि स्प्रिंग का मतलब है पनपना। चीजें पनपती हैं, खिलती हैं, लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे ब्लूम में आती हैं। तो आप भी ब्लूम में आ जाइए, और कहीं प्यार फील कर रहे हैं तो वो भी ब्लूम में आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक चीज नहीं होती है, स्प्रिंग में फूल तो खिलते ही हैं लेकिन इंसान भी खिलते हैं। So, मोहब्बत खिल रही है कहीं ना कहीं तो। जी हाँ, चलिए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और टॉप 10 हॉट 10 है तो टॉप 10 हॉट 10 में हम क्या करते हैं? वेल ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम उन चुनिंदा 10 गानों से रिलेटेड होता है जो कि टॉप पे होते हैं, जो कि ट्रेंडिंग होते हैं और मोस्टली नए होते हैं और सबकी जुबान पे होते हैं, म्यूजिकल स्ट्रीमिंग साइट पर एकदम दबदबा जिनका चल रहा होता है। उन्हीं गानों को अपनी झोली में डालकर मैं ले आई हूं और अब बस झोली से निकाल कर आपके सामने पेश करती रहूंगी। जी हाँ, तो सबसे पहले 10वें नंबर का जो गाना है उसकी बात कर लेते हैं, वो है मैसेकर। नाउ मैसेकर इज नॉट अ गुड वर्ड, बट यहां पर मैसेकर जो है वो गाना है और ये है अल्फा मूवी का, और ये मूवी जो है वो लगी हुई है एक OTT प्लेटफॉर्म पे, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट। पर पहले आप गाना सुनिए, क्योंकि ये है अल्फा मूवी का वेरी मच अल्फा सॉन्ग आप सबके लिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ ये गाना तो आपने सुन लिया और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ इस गाने के साथ साथ जिस मूवी का ये गाना है वो आप कहाँ देख सकते हो, क्योंकि अल्फा मूवी को रिलीज हुए काफी वक्त हो गया है और काफी वक्त हो गया है मतलब इसका ओटीटी रिलीज हो गया है और आप इसे ओटीटी पे देख सकते हैं। ऑल्दो ये 28th of August से ही जो है वो ओटीटी पे दिखना शुरू हुई है और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स। जी हाँ, सो नेटफ्लिक्स पे आप इसे देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आलिया भट्ट के साथ शर्वरी बाग इसमें लिटरली काफी धूम धड़ाका करती हुई नजर आ रही है। वेल आई से धूम धड़ाका, आई मीन काफी ज्यादा मार धाड़, एकदम टाइकोंडो कराटे एंड ऑल द यू नो किकिंग ऑफ एसेस, या दैट्स व्हाट शी इज गोना डू। एंड बॉबी देओल भी है इसमें और साथ में अनिल कपूर भी है। सो या यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड आई थिंक दैट्स अ गुड चांस, राइट? दैट्स अ गुड थिंग। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं और ये है एक नई नवेली मूवी का गाना जिसका नाम है हैवान। और इसमें बहुत वक्त बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान साथ में आए हैं। जी हाँ, साथ में आए तो हैं ही, लेकिन ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, इट्स अ क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी। जी हाँ, और इसमें सैफ अली खान खतरनाक है या अक्षय कुमार खतरनाक है, आई एम नॉट गोना टेल यू। वॉच द ट्रेलर एंड डिसाइड कि आप इसे देखना चाहते हो या नहीं, लेकिन मूवी का नाम ही हैवान है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी हैवानियत इसमें आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, एंड मूवी जो है थिएटर्स में लगी हुई है, सो आप वहां जाके इसे देख भी सकते हो।

वैसे देखा जाए तो गाना बड़ा दिलचस्प है। सारी की सारी सबसे पहले कह दिया कि मैं तो नहीं हैवान, फिर उसके बाद तुमको सजा देना अब मेरा है काम। जी हाँ, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो है इसमें कही गई, और फिर एंड में कह दिया अरे मैं तो नहीं हूं हैवान। अरे हैवान गिरी वाली सारी बातें कर दी और फिर एंड में बोल दिया मैं तो नहीं हूं हैवान, नहीं मेहमान नहीं हैवान। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर ये गाना आपने सुन लिया। जैसे मैंने कहा कि हैवान जो है वो लगी हुई है इट्स अ थ्रिलर, या मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बॉलीवुड वालों को सिर्फ और सिर्फ थ्रिलर बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब हर कोई दूसरी मूवी थ्रिलर है। सो यहाँ पर सैफ अली खान और अक्षय कुमार भी आ गए हैं। यू नो व्हाट, एक मूवी है इनकी जो बहुत ही फेमस है, और उस मूवी के सेट पे प्यार हुआ था सैफ अली खान और करीना कपूर को। जी हाँ, किसके बारे में बात हो रही है? वेल ऑफ कोर्स टशन के बारे में बात हो रही है, उसमें भी दोनों साथ में आए थे। लेकिन अब यहाँ पर उतना दोस्ताना नहीं दिख रहा है इस मूवी पे, क्योंकि इसमें हैवानियत दिखानी है। जी हाँ, इसके साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, जो कि काफी चल रहा है, क्योंकि इसका जो पहला वर्जन बहुत साल पहले आया था वो भी बहुत चला था। इसका रिक्रिएटेड वर्जन भी मतलब सरप्राइजिंगली पसंद आ रहा है लोगों को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राणा जी 2.0। वेल आई गेस द रीजन इज तनिष्क बागची, क्योंकि तनिष्क बागची ने इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और ये गाना जो है वो है राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई। जी हाँ, वही वाला गाना है ये, और थोड़ा नया इसको जो है वो कुछ तत्व देने की कोशिश की गई है, नया इफेक्ट डालने की कोशिश इसमें की गई है। बट क्या वो कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है, वाला अभी तक के लिए तो मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं और ये ट्रेंड कर रहा है, और 4th हफ्ता भी ट्रेंड कर रहा है। सो लेट्स सी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आयरन फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही अजीबो गरीब किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसके बारे में मुझे आपको बताना तो पड़ेगा। जी हाँ, मतलब कुछ फनी हो रहा है, कुछ अजीबो गरीब हो रहा है, तो आपसे कैसे मैं उसे ना बताऊं। जी हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है कि एक फैमिली है जो कि भारत यानी कि इंडिया के गुजरात में है। उन्होंने अपनी एक गाड़ी को, जो कि जब उन्होंने ली थी तो ऑलमोस्ट $4,000 की आई होगी, उस $4,000 की गाड़ी को, जिसका नाम वेगनार है, जी हाँ, उसको 12 साल बाद उन्होंने उसका फ्यूनरल किया, उसको बरियल किया, जी हाँ, और उसमें उन्होंने 1500 लोगों को बुलाया। अपेरेंटली उनके मुताबिक वो जो गाड़ी है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा लकी रही है, उनकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लकी रही है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोस्पैरिटी वो गाड़ी लेकर आई, उनकी फैमिली को वो यहां से वहां लेकर गई, तो उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार है। तो ना तो उन्होंने किसी को बेचा उस गाड़ी को, जी हाँ, ना ही उस गाड़ी को उन्होंने किसी ऐसी कंपनी को दिया जिसको वो और ज्यादा उसमें उसको रिसाइकिल करते या फिर कुछ ऐसा करते, उन्होंने उसको बरी कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उसको बरियल दिया उन्होंने, और लिटरली 1500 लोगों को बुलाया। अब क्योंकि गुजराती फैमिली है और गुजराती फैमिली ऐसा कर रही थी, तो गरबा भी हुआ, खाना था, भोग था, फिर बड़े ही अच्छे से उस वेगनार गाड़ी को डेकोरेट किया गया, और फिर उसको 15 फुट गहरी जो है एक खड्डा किया था उसमें डाल दिया गया और उसे वहां पर दफना दिया गया। जी हाँ, ये हुआ है। I'm not lying, I'm not making up stories or anything. It happened. Now, I wanna say, मतलब मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना हमें हंसना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हर एक फैमिली की अपनी एक फीलिंग होती है अपने व्हीकल्स को लेकर, अपने पैट्स को लेकर और अपने रिलेटेड चीजों को लेकर, राइट? ये फैमिली अपनी गाड़ी को इतना ज्यादा प्यार करती थी कि इन्होंने लिटरली इतने खूबसूरत तरीके से उसे प्यार दिखाने की कोशिश की। नाउ यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि एक गाड़ी जो किसी को बहुत ज्यादा प्यारी थी उसको लिटरली 12 साल चलाने के बाद उसको दफना दिया गया ताकि उसे बिल्कुल तकलीफ ना हो, बस उसने अपनी जर्नी को पूरा कर लिया है। इट्स अ कार बाय द वे, बट या दे लिटरली मेड इट लाइक इट्स अ ह्यूमन, और या फिर कोई क्रीचर है जो कि जिसमें सांस है या वो सांस लेने की जो है क्षमता रखता है या जिंदा है, उसके हिसाब से उसको जो है वो फ्यूनरल दिया गया। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट आई एम गोना से कि इंडियन लोग बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं और बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं. दैट्स ऑल आई वांट टू से. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है सातवें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का, और इसका नाम है मदहोश, और ये है टॉक्सिक मूवी का गाना जिसकी टॉक्सिक गिरी इतनी ज्यादा फैल गई है कि वो मूवी पिट गई है.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ टॉक्सिक की टॉक्सिक गिरी जो है वो फैल गई है और टॉक्सिक ने अपने माहौल को टॉक्सिक कर दिया है और वो मूवी पिट गई है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। सो टॉक्सिक जो है वो मूवी है यश की, और इसमें कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा के साथ साथ और भी नायिकाएं हैं इसमें। जब इसका ट्रेलर आया था, बेसिकली इसे रिलीज किया जाना था धुरंधर 2 के साथ में, लेकिन कुछ वजहों से ये डिले हो गई, ये पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो धुरंधर से डर गए थे। बट ऑफ कोर्स उनके अकॉर्डिंग वो चाह रहे थे कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो खत्म हो जाए ताकि मूवी अच्छे से रिलीज हो पाए मिडिल ईस्ट में, बट वो तनाव तो खत्म नहीं हुआ। सो टॉक्सिक के मेकर्स ने सोचा कि ये तो ना होगा खत्म, हमको रिलीज करना पड़ेगा अपनी मूवी को, एंड दे डिड। बट द थिंग इज कि उसके बाद जो है वो मूवी चल नहीं पाई। ऑल्दो यश और कियारा आडवाणी के अभिनय की सराहना की गई, मतलब उनकी तारीफ हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी को बेकार बोला जा रहा है। और That's what they did. अब एक ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का जो था वो इसका बजट था, लेकिन मूवी ने 400 करोड़ भी नहीं कमाए अभी तक पूरे, और अब ये ऑलमोस्ट उतर रही है थिएटर से, अभी तक नहीं उतरी है। बट आप सोच सकते हो कि ज्यादा टाइम नहीं है इसके पास, क्योंकि मूवी पिट चुकी है। जी हाँ, इसी के साथ अपना आधा बजट भी ये पूरा नहीं कर पाई है। ऑफ कोर्स जब मूवी पिटती है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन बुरी मूवीज बनाने के लिए किसने बोला था, किसने बोला था डायरेक्टर्स को? जी हाँ, मतलब कहाँ धुरंधर टाइप की मूवीज बन रही है, कहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मूवीज बन रही है, लाइक 12th फेल है ना, और इतनी खूबसूरत मूवीज और भी, लेकिन ये टॉक्सिक क्या है? ऊपर से नाम भी गलत रख दिया, मतलब ऐसा रख दिया नाम कि इसकी खुद की फेंगशुई ही खराब हो गई लिटरली। जी हाँ, अब आप सोच लीजिए, अगर मूवी पिटी है तो इसके नाम की वजह से पिटी है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर होती और ये मेरे पास आते तो मैं बोलती सबसे पहले तो इसका नाम चेंज करो, आधी समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बट नोबडी डिड, सो ऑफ कोर्स इट हैपेंड। एंड इसी के साथ आप में से कितने लोगों ने टॉक्सिक को देखा है जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ अगला गाना ये है रंगियारा, और ये है हैवान मूवी का गाना जो कि लगी हुई है थिएटर्स में, इसी हफ्ते रिलीज हुई है, सैफ अली खान का ये गाना, और इसमें अक्षय कुमार भी हैं इनके साथ, जिसका एक और गाना आपने बस थोड़ी देर पहले ही सुना।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। और आधी लिस्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, बची हुई है आधी। अब हम आधी लिस्ट को भी कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस हफ्ते आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और बेसिकली थिएटर्स में जाकर क्या क्या देख सकते हो। क्या आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, ये सारी बातें हम आपसे करने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी मूवीज से जो कि इस ही हफ्ते रिलीज हुई हैं। लेट्स जस्ट से सबसे पहले जो है मूवी वो है हैवान। जी हाँ, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूं। हैवान जो है उससे आप देख सकते हो, और ये है थ्रिलर। जी हाँ, क्राइम थ्रिलर, और इसमें आपको अक्षय कुमार और सैफ अली खान दोनों मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसी हफ्ते रिलीज हुई है, यू कैन वॉच इट। इसी के साथ लास्ट मैन इन टावर, इफ यू आर अ फैन ऑफ मनोज बाजपेयी is acting just like me, then you should go for it. ये एक dramatical movie है, drama है full on, और ये अरविंद अडिगा एक की best seller पर जो है वो आधारित है, Last Man in Tower। और इसमें आपको दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी भी मिलेंगे। So basically तीन actor जो तीनों ही बहुत ज्यादा गजब के हैं। जी हाँ, so ये भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो आपको movie मिलने वाली है, जो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते से रिलीज हुई है, सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात करते हैं, मिर्जापुर। जी हाँ, मिर्जापुर द मूवी आप देख सकते हैं। जो गाना मैं अभी सुनाने वाली हूं आपको पांचवें नंबर का, वो भी मिर्जापुर का है, तो आप वो भी सुनेंगे और साथ में आप देख भी सकते हैं। अगेन, मिर्जापुर इज द मूवी, यू कांट वॉच इट विद योर किड्स बिकॉज इसमें बहुत सारी कर्सिंग है। और अगेन, आप मिर्जापुर के अगर फैन हैं तो आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इट्स अ वेरी यू नो हार्ड मूवी फॉर यू नो एनी वन जो कि मूवीज नहीं देखते हैं। सो ऑफ कोर्स ईदर यू कैन वॉच इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे जॉनर की मूवी और ऐसी टाइप की मूवीज देखते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट फॉर यू। बट आप ट्रेलर देख सकते हैं एंड यू कैन लेट मी नो आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे। इसके अलावा जो मूवी मैं आप सबको रिकमेंड करने वाली हूं वो है हनुमान अंश। नाउ हाईली हाईली हाईली रिकमेंडेड बिकॉज ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही बड़े आचार्य, एक बहुत ही बड़े बाबा, नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित है, और क्या रहा उनकी जिंदगी का सफर, ऐसे ही कैसे उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े लोगों को दूर दूर देशों से अपनी ओर खींच लिया, और कैसे उन्होंने अपने इस इरादे को, अपने उन उपदेशों को आगे फैलाया। जी हाँ, सो ये मूवी जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल आपको करेगी। और हनुमान अंश इस मूवी का नाम, आपको मैं बता दूं कि इसकी जो प्रोड्यूसर है वो पहली बार मूवी प्रोड्यूस कर रही थी। इसमें जो एक्टर है जिन्होंने लीड रोल प्ले किया है वो पहली बार एक्टिंग कर रहे थे, वो एक नॉर्मल असिस्टेंट थे, क्योंकि इस मूवी को कोई और लीड करने वाला था, उन्होंने मूवी छोड़ दी और फिर मूवी मेकर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसको लें। फिर उन्होंने इनका ऑडिशन किया और इनको लिया। दो बार ऑडिशन फेल हो गया लेकिन तीसरी बार कामयाबी मिली और उसके बाद ये मूवी हमारे सामने है। इनफैक्ट इसमें जितने भी गाने हैं वो भी सब नॉर्मल सिंगर्स को, जो लोक गीत गाते हैं उनको जो है लिया गया है। सारे के सारे गाने बहुत खास हैं और इसी मूवी का एक गाना है जो नंबर वन पे बना हुआ है। सो बेसिकली इस लिस्ट में जो नंबर वन गाना है वो वही है विच आई एम गोना टेल यू अबाउट। सो आप ये मूवी भी देख सकते हो और ये है कुछ इंडियन मूवीज जो आप देख सकते हो और इनका आप लुत्फ उठा सकते हो। इसको तो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, लाइक लिटरली। जी हाँ। सो आगे कौन सी हॉलीवुड मूवीज हैं जो आप देख सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये गाना जो कि है मिर्जापुर द मूवी का। गाना बेशक बहुत पुराना है, नुसरत फतेह अली खान, जी हाँ, उन्होंने इसे गाया था और उसके बाद इसे बहुत सारे लोगों ने गाने की कोशिश की है। इसमें भी इस मूवी का इस गाने का एक वर्जन जो है वो लिया गया है और गाने का नाम है सांसों की माला।

जी हाँ दोस्तों, तो गाना आपने सुन लिया है भाई। जो इंटेंसिटी इस गाने में है, चाहे इसको कोई भी गाए और कभी भी गाए, मतलब पहले जिन्होंने गाया उन्होंने भी इंटेंसिटी के साथ गाया, और मधुर शर्मा जिन्होंने इस वाले वर्जन को गाया वो मेरे फेवरेट्स में से एक है। सो ऑफ कोर्स उन्होंने भी इसे बड़ी ही खूबसूरती से और इंटेंसिटी से, वही इंटेंसिटी जो चाहिए होती है इस गाने के लिए भाई, अगर वो इंटेंसिटी नहीं है ना तो ये गाना अच्छे से गा नहीं सकता कोई। सो ऑफ कोर्स ही डिड वेल, लाइक रियली वेल। इसी के साथ अब आपको आते हैं हॉलीवुड मूवीज के बारे में जो आप देख सकते हो थिएटर्स में इस हफ्ते, कुछ अकेले, कुछ अपनी फ्रेंड्स के साथ और कुछ अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द ओडिसी से। जी हाँ, द ओडिसी बेसिकली आप सबके साथ देख सकते हो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स एंड ऑफकोर्स अपनी पार्टनर, किसी के साथ भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी अच्छी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि इसे क्रिस्टोफर नॉलन ने बनाया है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अबाउट कैमरा वर्क, अबाउट स्टोरी टेलिंग, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स वी हैव राइट नाउ। जी हाँ, इसी के साथ ये मूवी काफी टाइम से लगी हुई है बाय द वे, और इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, दैट इज द फनीएस्ट पार्ट। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे इज स्टिल इन द थिएटर्स। मोस्ट प्रोबेबली आपने देख ली होगी, क्योंकि अभी तक कौन ही छोड़ेगा स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे को, लेकिन अगेन बहुत सारे लोग दोबारा भी देखते हैं मूवीज को, बिकॉज दैट इज द रीजन दैट पीपल आर स्टिल वॉचिंग इट। एंड ये मूवी जो है वो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है पूरे वर्ल्ड में, ऑफ ऑल टाइम। या दैट्स ट्रू एक्चुअली में। जी हाँ, इसी के साथ अगला जो मूवी है वो है फॉल टू डेड पॉइंट। जी हाँ, अगेन ये एक एडवेंचरस ड्रामा थ्रिलर है, और फॉल टू डेड पॉइंट मतलब आपको सुनने से ही नाम को जो है वो पता चल रहा होगा कि कहीं से गिरने की बात हो रही है भाई, कुछ तो गिरने से रिलेटेड इसमें जरूर है, एंड यू आर राइट बिकॉज दैट इज व्हाट्स हैपनिंग हियर। वॉच द ट्रेलर एंड लेट मी नो इफ यू वांट टू वॉच इट। इसी के साथ अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो फिर तो आपके लिए एक मूवी है जो कि पिछले दो हफ्तों से लगी हुई है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। जी हाँ, आपने सही सुना, इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। इंसीडियस जो है वो एक बहुत ही पुरानी सीरीज है मूवीज की, हॉरर मूवीज की, और उसका नया पार्ट आ चुका है, एंड इट्स अ हॉरर, इट्स अ साईफाई एंड इट्स अ थ्रिलर। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ मिलने वाला है इसमें, एंड या इफ यू आर अ फैन ऑफ दिस जॉनर गो फॉर इट, लेट मी नो आपको कैसी लगी। सो ये कुछ मूवीज है जो कि आप देख सकते हैं थिएटर्स में, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ अपने पार्टनर्स के साथ, कुछ अपनी फैमिलीज के साथ, बट ध्यान से पहले ट्रेलर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी मूवी देखने को जाना है। इसी के साथ अगला गाना आपके लिए जो कि है इश्क मस्ताना फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा, जो कि नेटफ्लिक्स पर अगेन आपको मिल जाएगी।

एक बात तो पक्की है, ये गाना ना मास्टरपीस है। मास्टरपीस मतलब मास्टरपीस से कम तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब जब गाना स्टार्ट होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वाह, कोई सूफी टोन के साथ गाने की शुरुआत करता है, फिर सूफी से थोड़ा क्लासिकल टोन में चला जाता है, फिर क्लासिकल से सीधा एकदम रॉक में चला जाता है। जी हाँ, मतलब जैज, रॉक, पॉप और फिर क्या क्या नहीं हो रहा है। एंड तक तो लिटरली जैजी, रॉक, पॉप सब कुछ चल रहा होता है, थोड़ा क्लासिकल, थोड़ा सा सूफी, मतलब सब कुछ चल रहा है। इस गाने को बनाने के लिए जो भी दिमाग लगाया गया है, मैं कहती हूँ कि हमें लिटरली बो डाउन करना चाहिए उस दिमाग के लिए। आई मीन इमेजिन क्या क्या नहीं है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी इट्स अ वेल पुट टूगेदर सॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, हो कुछ भी रहा है पर वो अच्छा लग रहा है। या सो आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उसे अच्छे तरीके से कर रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। आई थिंक दिस सॉन्ग इज अ वेरी एग्जांपल ऑफ दैट। जी हाँ, इसी के साथ अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि अगेन मिर्जापुर द मूवी का है, और ये है गाना वारू फॉरएवर। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर आपको लेकर जाते हैं नंबर 2 और नंबर 1 सॉन्ग की तरफ।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और नंबर 2 सॉन्ग है इस हफ्ते का आवारापन 2 का गाना तेरा मेरा रिश्ता। अब आवारापन 1 में भी ये गाना था, 2 में भी है, और आज भी लोगों को उतना ही दीवाना बना रहा है। तो सुनते हैं इसको, क्योंकि ये है वो इंटेंसिटी जो कि सिर्फ इमरान हाशमी सर्व कर सकते हैं, और उनकी मूवीज के गाने हमेशा अच्छे होते हैं। सो ऑफकोर्स ही इज लिटरली यू नो गिफ्टेड व्हेन इट कम्स टू गुड सॉन्ग्स फॉर हिज मूवीज।

जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा थोड़ा सेंटी गाना नहीं हो गया? वाला आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कोई ना कोई ऐसा सेंटी गाना जरूर आता है जो सबको दीवाना बना देता है। ऑल्दो ये पिछले 2 हफ्तों से ट्रेंड कर रहा है, ये 3रा हफ्ता है, सो अगेन ये गाना जो है वो पहले भी आपको दीवाना बना चुका है, अभी भी बना रहा है। और बट हम सेंटी नहीं होंगे क्योंकि हम एकदम खुश रहने वाले लोगों में से हैं। और वीकेंड है भाई, स्प्रिंग है, हम सेंटी नहीं होने वाले, हम खुश रहने वाले। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीकेंड, एंजॉय कीजिए, बाहर निकलिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, गपशप कीजिए, नई नई एक्टिविटीज कीजिए। हाँ, थोड़ा बारिश वाला माहौल भी रहने वाला है, बट द थिंग इज कि उसके अलावा जो भी मौका मिला है तो बस बाहर जाइए, चीजों को पनपते हुए देखिए, खिलते हुए देखिए और खुद भी खिल जाइए। दैट्स अबाउट इट। नंबर 1 सॉन्ग इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का है मैंने तेरे ही भरोसे। जी हाँ, हनुमान अंश का ये गाना। आप बोलोगे कि ये गाना ट्रेंड कर रहा है, वेल ऑफ कोर्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ भजन, बट ये गाना इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि हर रील में आपको यही गाना सुनाई दे रहा है। सो हनुमान अंश हैज लिटरली टेकन ओवर ऑल द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, एंड दैट्स द रीजन इट इज हियर। जी हाँ, सुनते हैं इसको एंड अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मिलते हैं आपसे मंडे को। बाय, सी यू, टाटा।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachchon ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Subah se shaam tak.
2: When I will dance, my dance shall speak for me.
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
4: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा ओके
4: सॉफ्ट या
5: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
6: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
5: ऐसा क्या खास है वहाँ
6: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
5: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818
7: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीम सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651